0: 6টা হওয়া যাচ্ছে পরবর্তী প্রসারণ প্রথমে হিন্দি এবং পরপরে ইংরাজী সংবাদ রিলে করে প্রচার করছু আকাশবাণী দিল্লি রো
1: নমস্কার আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে নবীন সাক্সেনা संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
2: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
1: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणाली के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्यप्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। सरकार ने कहा है कि 2024-25 के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में अब कहीं भी हाथ से मैला ढोने का काम नहीं हो रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कल राज्यसभा में बताया कि 2013 के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में 58,000 और 2018 के सर्वेक्षण में 98 ऐसे लोगों की पहचान की गई जो हाथ से मैला ढोते थे। डॉ. वीरेंद्र ने बताया कि इन सभी को 40,000 रुपए की सहायता पुनर्वास के लिए दी गई। उन्होंने कहा कि सरकार नमस्ते स्कीम के अंतर्गत ऐसे लोगों को टिकाऊ आजीविका के अवसर देना जारी रखे हुए है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। नई दिल्ली में कल अफ्रीका दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग का ढहना हाल के वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की जिसमें भारत के शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए की जा रही पहलों की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पर श्री जोशी ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने प्रमुख कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में तेजी लाने के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता और सुलभता को बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श किया। नीति आयोग ने री इमेजिंग केयर स्ट्रेटजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत एट 2047 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट समावेशी विकास और सामाजिक उन्नति के साथ ही कुशल देखभाल पेशेवरों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को मजबूत करती है। ईरान ने कहा है कि ओमान के साथ हॉर्मूज जलडमरू मध्य पर समझौते की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वहीं अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस सप्ताह समझौते की घोषणा का अंदेशा जताया है। संभावित समझौते से इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को फिर से खोलने में मदद मिल सकती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम हो सकता है। जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में ओडिशा पंजाब झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयंबटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। कोयंबटूर में आज खेले जाने वाले सेमीफाइनल में ओडिशा का मुकाबला पंजाब से और झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड झारखंड पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों ओडिशा महाराष्ट्र के भीतरी हिस्सों कोंकण और

0: न्यूज़ बुलेटिन।
1: आकाशवाणी भवानीपटना आरंभ करछु भक्ति गीतर कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम प्रथम कंठशिल्पी सत्यवादी मिश्र पुरातन रचनार मते सही रूप देखाओ हरि जय श्री राधे राधे बोली डाके बांसुरी।

0: ଆକାଶବାଣୀର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଆକାଶବାଣୀ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: दीवदलं च सप्तत्रीणि इत्यंकान्तरालेन पराजितम् इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी भवानीपाटणा समय वर्तमान सकाळ 7:00 एथर शुणंतु आज आम केन्द्र प्रचारित होगा कार्यक्रम संपर्क में सूचना सकाळ 7:25 शुणी ओडिया आलोचना जोगेश्वर शिव और श्रावण महात्म्य आलोचक लिंगराज मिश्र चाषर कथा रही सकाळ 7:40 सकाळ 7:45 शुणी भक्ति गीत उपर आधारित कार्यक्रम गीत गीतांजलि शिल्पी नमिता अग्रवाल सकाळ 8:30 शुणी संगीत लहरी कंठशिल्पी मैंने महम्मद अजीज सोहम और विकास दास कविसम्राट उपेन्द्र भंज कृत महाकाव्य वैदेहीश विलासर संगीतात्मक परेषण शुणी सकाळ 8:45 सकाळ 9:00 ओडिया कथचित्र गीत सकाळ 9:30 हिंदी कथचित्र गीत पूर्वाह्न 10:10 शुणी विशेष कार्यक्रम खोला छरका दिन 12:00 और दिन 2:45 प्रचार करिबो हिंदी कथचित्र गीत दिन 12:30 सुगम संगीत कंठशिल्पी मैंने मिताली चिनारा लोपिता मिश्र गीताराणी दास और तनसेन सिंह चासर कथा दिन गोटे 10 मिनिट्रे महिला मानक उद्दिष्ट शक्ति रूप कार्यक्रम प्रचार करिबो लाइव फोन इन दिन गोटे 20 मिनिट्रे अपराह्न 5:00 शुणी प्रायोजित कार्यक्रम उमंग युववाणी अपराह्न 5:30 आज रही विज्ञानिका संध्या 6:30 शुणी कार्यक्रम विकास मंत्र और राति 7:25 प्रचार करिबो जिला हालचाल क्रम खोर्धा जिला संपर्क यह कार्यक्रम दे रिले कर प्रचार करिबो आकाशवाणी कटक केन्द्र राति 7:30 शुणी प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी रिले करी सुनाइबो आकाशवाणी कटक केन्द्र राति 8:00 शुणी संसद समीक्षा आकाशवाणी दिल्ली राति 8:15 प्रचार करिबो केतोटी हिंदी भक्ति गीत शिल्पी माना दे एम एस शुभलक्ष्मी सी एच आत्मा स्पोर्ट्स केन राति 8:30 स्पॉटलाइट राति 9:16 कंट्री वाइड एंड इनसाइट राति 9:30 संसदर प्रश्नकालर रेकर्डिंग राति 10:00 ए समस्त कार्यक्रम रिले कर प्रचार करिबो आकाशवाणी दिल्ली एथिला आज आम केन्द्र प्रचारित होगा कार्यक्रम संपर्क में सूचना आकाशवाणी भवानीपाटणा परवर्ती कार्यक्रम रिले कर प्रचार करछु आकाशवाणी कटक केन्द्र।

पद्ममाला सरसि विकसिता गन्धपुष्पैः तदर्थं क्षन्तव्यो मे पराध शिव शिव शिव भो श्री महादेव शंभो। अर्थात हे शिव शंभो, मु प्रत्युषरे उठी स्नान सारी आपणक स्नान निमन्ते गंगा जल आनीपारी नाही। बिल्वपत्र पद्ममाला गन्धपुष्प किछि अर्पण करी नाही, मोर अपराध क्षमा करंतु। शिव पूजा निमन्ते वर्ष मध्यरे श्रावण कार्तिक माघ मास अधिक पुण्यप्रद बोली धरा जाए। शैव पीठ मानंकरे यही समय रे भक्त मानंकर प्रबल भीड़ जमे। द्वादश ज्योतिर्लिंग व्यतीत बहु प्राचीन शिव मंदिर रे श्रद्धालु माने समवेत हो शिव दर्शन पूजार्चना करती। आम ओडिशा प्रदेश रे प्रभु लिंगराज लोकनाथ चंद्रशेखर हटकेश्वर धवलेश्वर गुप्तेश्वर आदि बहु पवित्र शैव पीठ रे श्रावण यात्रा रे हजार हजार श्रद्धालु जलाभिषेक करती। अविभक्त कलाहांडी रे शैव उपासनार परंपरा अति प्राचीन। मोहनगिरी बेलखंडी दादपुर सब

0: ପ୍ରଚାର କଲ ଗୀତ ଗୀତାଞ୍ଜଳିରେ କେତୋଟି ଭକ୍ତି ଗୀତ ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣ। ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ 8ଟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସାରଣ ସମାଚାର ପ୍ରଭାତ ଓ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के

0: निःशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार है जिसका उपयोग देश को वैश्विक स्तर पर सामग्री सृजन के केंद्र के रूप में मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन तेज। उत्तराखंड में तेज बारिश की चेतावनी के बीच सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया और भारत के 60 जहाजों ने सुरक्षित होर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेटफ्लिक्स के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सेरेंडोस के साथ कल नई दिल्ली में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा रही है और देश में ऐसी कई रचनाधर्मी प्रतिभाएं हैं जो भारत को सामग्री सृजन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं।
2: हम एक साथ मिलकर क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करें। हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत के संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें। आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जो आपके साथ ही भारत को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दे। और इसके लिए हमें ग्लोबल ऑडियंस को भी एंगेज करना होगा, दुनिया के नौजवानों के साथ जुड़ना होगा। आज पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते।
1: नेटफ्लिक्स के अनुसार दोनों पक्षों के बीच भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने को लेकर चर्चा हुई। नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव शुरू करने की भी घोषणा की है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव डॉ टीवी सोमनाथन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने कल इसकी मंजूरी दी। डॉ सोमनाथन का कार्यकाल इस महीने की 30 तारीख को समाप्त हो रहा था। समिति ने गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल भी एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। नई दिल्ली में कल अफ्रीका दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है।
3: इंडिया इज प्राउड टू बी वन ऑफ अफ्रीका।
4: भारत अफ्रीका के सबसे बड़े व्यापार और निवेश साझेदार होने पर गर्व महसूस करता है। पिछले साल हमारा द्विपक्षीय व्यापार 93 अरब अमरीकी डॉलर रहा। भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। ये निवेश दूर संचार, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, बुनियादी ढांचे, कृषि और डिजिटल सेवाओं जैसे कई क्षेत्रों में फैला हुआ है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत के संबंध 10 सिद्धांतों पर आधारित हैं, जिनकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में युगांडा की संसद में की थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग का रहना हाल के वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था। संसद में आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। इस विधेयक का उद्देश्य भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। राज्यसभा में विनियोजन विधेयक पर चर्चा निर्धारित है। इस विधेयक में मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कुछ एक सेवाओं पर खर्च की गई राशि का भुगतान भारत की संचित निधि से किए जाने की व्यवस्था की गई है। ये विनियोजन उस वर्ष सेवाओं के निर्धारित से अधिक राशि के भुगतान के लिए किया जा रहा है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। सरकार ने कहा है कि 2024-25 के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में अब कहीं भी हाथ से मैला ढोने का काम नहीं हो रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कल राज्यसभा में बताया कि 2013 के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में 58,000 और 2018 के सर्वेक्षण में 98 ऐसे लोगों की पहचान की गई थी जो हाथ से मैला ढोते थे। डॉ. वीरेंद्र ने बताया कि इन सभी को 40,000 रुपये की सहायता पुनर्वास के लिए दी गई। ये समाचार आकाशवाणी

0: से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन उग्र हो गया है। राज्य में विधानसभा का वर्षाकालीन सत्र भी आज से शुरू हो रहा है। पिछले चार दिनों से भूख हड़ताल कर रहे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा नेता देवेंद्रनाथ महतो के साथ 5 प्रदर्शनकारी शामिल हो गए हैं। इनमें 2 महिलाएं भी हैं। ब्लड शुगर और रक्तचाप कम हो जाने के कारण श्री महतो के स्वास्थ्य को लेकर चिंता पैदा हो गई है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उनकी सरकार विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए संकल्पित है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर राजधानी रांची में 25 जुलाई से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। प्रदर्शनकारी विद्यार्थी 14वें झारखंड लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे। नीति आयोग ने री इमेजिंग केयर स्ट्रेटेजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत @2047 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट समावेशी विकास और सामाजिक उन्नति के साथ ही कुशल देखभाल पेशेवरों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को मजबूत करती है। रेलवे ने आदर्श रियायत करार में सुधार को मंजूरी दे दी है। इससे कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों को एक ही लाइसेंस से देश भर में कंटेनर ट्रेन चलाने की अनुमति मिल जाएगी। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का पंजीकरण शुल्क देना होगा। इस मंजूरी के साथ ही अलग अलग मार्गों के लिए अलग अलग पंजीकरण कराने की व्यवस्था बंद हो गई है। नई व्यवस्था के तहत ऑपरेटरों को 20 वर्ष तक के लिए अनुमति दी जा सकेगी। मंत्रालय के अनुसार कंटेनरों की रेल ढुलाई से सड़क यातायात की भीड़ कम होगी, ईंधन की खपत में कमी आएगी और कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में गंभीर सुरक्षा स्थिति के बावजूद हुर्मुज जलडमरू मध्य से होकर 60 व्यापारिक जहाज सुरक्षित निकाल आए हैं। संसद में एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने यह भी बताया कि खाड़ी क्षेत्र से 3972 भारतीय नाविकों को स्वदेश भेजा गया है और 2400 घंटे काम कर रही आपदा प्रबंधन प्रणाली के पास हजारों फोन और ईमेल प्राप्त हो रहे हैं। हुर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ऊर्जा आपूर्ति के लिए ये दुनिया का एक प्रमुख जलमार्ग है। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की जल्द रिहाई में सहयोग करने का आग्रह किया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कोलंबो दौरे के दौरान श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत में ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से सुलझाया जाना चाहिए। विक्रम मिश्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या, विदेश मंत्री विजेता हेरात और विदेश सचिव अरुणी रणराजा से मुलाकात की। ईरान ने कहा है कि हुर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर ओमान के साथ एक समझौते के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसी सप्ताह ये समझौता हो सकता है। एक रिपोर्ट।
1: इस संभावित समझौते से हुर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खुल जाएगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम होगा और युद्ध समाप्त करने में भी मदद मिलेगी। हालांकि समझौता इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाता है या नहीं। ईरान ने कहा कि वह हुर्मुज जलडमरू मध्य पर एक हद तक नियंत्रण चाहता है और इस मार्ग से आवाजाही वैसी नहीं रहेगी जैसी युद्ध से पहले थी। ईरान हुर्मुज जलडमरू मध्य के उत्तरी हिस्से को जबकि ओमान दक्षिणी हिस्से को नियंत्रण करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। ईरान युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई के लिए हुर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण चाहता है। ईरान ने आगाह किया कि अमेरिका के किसी और हमले की स्थिति में वह खाड़ी देशों को निशाना बनाएगा। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: जापान के हिरोशिमा में आज परमाणु बम गिराए जाने की बरसी है। सन 1945 में हुई इस घटना में 140,000 लोग मारे गए थे। आज सुबह घटनास्थल पर पीस मेमोरियल पार्क में मौन रखा गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में नेताओं ने परमाणु हथियारों को खत्म किए जाने की अपील की। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए जाने के साथ ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश की चेतावनी को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने SDRF, NDRF, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियों को घनिष्ठ समन्वय बनाए रखने और किसी भी आपात स्थिति में राहत और बचाव अभियान सुनिश्चित करने को कहा है। उत्तराखंड आपदा विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया गया है।
2: उत्तराखंड के लिए अभी जो अलर्ट आया है वो देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट है। उत्तराखंड के शेष जनपदों के लिए येलो अलर्ट है। 3 जनपद जहां पे ऑरेंज अलर्ट है वहां पर ज्यादा बरसात की संभावना है और बाकी जनपदों में नॉर्मल बरसात होगी। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी जनपदों को निर्देश जारी किए गए हैं विभिन्न माध्यमों से और SMS के माध्यम से।

0: हम लोग लोगों को अलर्ट करते हैं।
1: राज्य में मौसम के बारे में और जानकारी दे रही हैं हमारे संवाददाता।
2: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संभावित आपदा की किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य की सभी आपदा प्रबंधन और राहत एजेंसियों को सतर्कता के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों और नदी नालों की निगरानी रखने पर भी जोर दिया है। उन्होंने आपातकालीन परिचालन केंद्रों को 24 घंटे सक्रिय रखने और प्रत्येक घटने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में जनहानि को रोकना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: मौसम विभाग ने आज झारखंड, गांगेय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार आज दोपहर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि अपनी तीक्ष्ण वाक्पटुता, संवेदनशील नेतृत्व और राष्ट्रहित के प्रति अटूट समर्पण के बल पर सुषमा स्वराज ने भारतीय राजनीति में एक विशिष्ट स्थान अर्जित किया। खेलों में जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में उड़ीसा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कोयम्बटूर में आज सेमीफाइनल में उड़ीसा का मुकाबला पंजाब से जबकि झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: संसद में जारी गतिरोध समाप्त करने के प्रयास के तहत संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है संसद गतिरोध, राहुल गांधी से मिले रिजिजू, परिसीमन और FCRA पर राहत तलाशने की कोशिश। जकरबर्ग ने भारत से मांगी माफी, फेसबुक से पीएम मोदी की पोस्ट हटाने पर आखिर झुके मेटा प्रमुख, अमर उजाला सहित कई अखबारों की सुर्खी है। पत्र लिखता है मेटा ने माना, खास तरह का कंटेंट बढ़ाने के लिए मिली थी मोटी रकम। दैनिक जागरण ने अपने आर्थिक पन्ने पर RBI गवर्नर के शब्द प्रकाशित किए हैं, लगातार चौथी बार रेपो रेट 5.25% पर स्थिर। गवर्नर ने कहा पश्चिम एशिया में संघर्ष जारी रहा तो ईंधन और खाने पीने की चीजें हो सकती हैं महंगी। नीट होगी फुल प्रूफ, JEE तर्ज पर परीक्षा की तैयारी, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दिया हलफनामा। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर युवाओं के नशे में गिरफ्त होने का लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है ताकि नशे की गिरफ्त में ना आए युवा। पत्र लिखता है भारत में करीब 75% युवा 21 साल की उम्र तक किसी न किसी नशे का शिकार हो चुके हैं। परिवार और शिक्षक संजीदगी से संवाद करें तो उन्हें नशे से बचाया जा सकता है। ईरान और ओमान होर्मूज खोलने पर हुए सहमत, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है ईरान को होर्मूज पर मिल सकता है कंट्रोल। दैनिक भास्कर ने कोटा में नोनेरा एब्रा डैम के बंद होने के बाद काली सिंध नदी का जलस्तर बढ़ने से चारों तरफ छाई हरियाली का चित्र प्रकाशित किया है, जिसमें पानी के ठहराव से नदी किनारे बसी कराइयों और हरी भरी वादियों का सौंदर्य चरम पर है।
1: धन्यवाद नवीन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत में रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव TV सोमनाथन और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन तेज। उत्तराखंड में तेज बारिश की चेतावनी के बीच सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया और भारत के 60 जहाजों ने सुरक्षित होर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज इंडियाज एक्स्ट्रॉर्डिनरी पूल ऑफ क्रिएटिव टैलेंट कैन बी लीवरेज टू स्ट्रेंथन नेशंस पोजीशन एज ग्लोबल हब फॉर कंटेंट क्रिएशन। Government extends 10 years of Cabinet Secretary T.V. Somnathan and Union Home Secretary Govind Mohan by 1 year. Students intensify their protest.

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
1: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
0: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
1: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
2: ଶୁଣୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୀ କଥାଚିତ୍ରର ଗୀତ ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା କେନ୍ଦ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୀତଟିକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦୟାବାନ କଥାଚିତ୍ରର ଲତକଣ୍ଠରେ ଗୀତଟିକୁ ଗାଇଛନ୍ତି ଅନୁରାଧା ପଡ଼ୱାଲ ଓ ପଙ୍କଜ ଉଦାସ। ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଅଜିଜ କୈସି, ସଙ୍ଗୀତ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପେରିଲାଲ।

0: প্রচার কল হিন্দি কথাচিত্র গীত আকাশবাণী ভবানী পাটনা সময় বর্তমান দিন দশটা হওয়া যাচ্ছে পরবর্তী প্রসারণ প্রথমে হিন্দি এবং পরপরে ইংরেজি সংবাদ রিলে করে প্রচার করছু আকাশবাণী দিল্লি রো।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेटफ्लिक्स के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सैंड्रोस के साथ कल नई दिल्ली में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा रही है और देश में ऐसी कई प्रतिभाएं हैं जो भारत को सामग्री सृजन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं। नेटफ्लिक्स के अनुसार दोनों पक्षों के बीच भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने को लेकर चर्चा हुई। नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव शुरू करने की घोषणा भी की है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव डॉ टीवी सोमनाथन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने कल इसकी मंजूरी दी। डॉ सोमनाथन का कार्यकाल इस महीने की 30 तारीख को समाप्त हो रहा था। समिति ने गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल भी एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। संसद में आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। इस विधेयक का उद्देश्य भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। राज्यसभा में विनियोजन विधेयक पर भी चर्चा होनी है। इस विधेयक में मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कुछ एक सेवाओं पर खर्च की गई राशि का भुगतान भारत की संचित निधि से किए जाने की व्यवस्था की गई है।

0: यह विनियोजन उस वर्ष सेवाओं के लिए निर्धारित से अधिक राशि के भुगतान के लिए किया जा रहा है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़े मुद्दों को लेकर निर्माण एजेंसी और इंजीनियरों तथा अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। प्रभावित सड़क खंड को ठीक करने और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उपाय किए गए हैं। सड़क मार्ग के पूरी तरह ठीक होने तक टोल को स्थगित रखा गया है। इस एक्सप्रेसवे के 64 किलोमीटर सड़क खंड पर पिछले महीने की 26 तारीख को फिसलन महसूस की गई थी। सभी दोषियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है। महाराष्ट्र में डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा है। डॉक्टर सरकार के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जिसके अंतर्गत होम्योपैथ को महाराष्ट्र चिकित्सा परिषद ने पंजीकरण कराने और 6 महीने का प्रमाण पत्र लेने के बाद एलोपैथिक दवाएं लिखने की अनुमति दे दी गई है। महाराष्ट्र में डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अथर्व शिंदे ने बताया कि 32 मेडिकल कॉलेज और मुंबई नगर पालिका के अस्पतालों में हड़ताल चल रही है। उन्होंने आगाह किया कि अगर सरकार बातचीत शुरू नहीं करती तो 24 घंटे बाद आपातकालीन सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। हालांकि एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर आशुतोष आदि ने कहा कि बेहद गंभीर मामलों का इलाज जारी रहेगा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना में खाद्य पदार्थों में बढ़ती मिलावट पर गंभीर चिंता प्रकट की है। उन्होंने कहा कि रंगों, पाउडरों और धान की भूसी के तेल की मिलावट मसालों में की जा रही है ताकि उनके रंग बेहतर दिखें और वजन तथा बाजार भाव बढ़ जाएं। श्री रेड्डी ने तेलंगाना सरकार से अपील की है कि वो इस मुद्दे पर तुरंत और सख्त कदम उठाए क्योंकि ये लोगों के स्वास्थ्य से सीधे तौर से जुड़ा मुद्दा है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। नई दिल्ली में आयोजित इस समारोह में सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि अपनी तीक्ष्ण वाक्पटुता, संवेदनशील नेतृत्व और राष्ट्रहित के प्रति अटूट समर्पण के बल पर सुषमा स्वराज ने भारतीय राजनीति में एक विशिष्ट स्थान अर्जित किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश की चेतावनी को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियों को घनिष्ठ समन्वय बनाए रखने और किसी भी आपात स्थिति में राहत और बचाव अभियान सुनिश्चित करने को कहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi met the co-CEO of Netflix, Ted Sarandos, in New Delhi. The Prime Minister said in a social media post that India has a rich tradition of storytelling and an extraordinary pool of creative talent which can be leveraged to strengthen the country's position as a global hub for content creation. Mr. Modi said that they discussed the immense potential of India's media and entertainment sector.
2: हम एक साथ मिलकर क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत, हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत के संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें, हम भारत की अपनी स्टोरी सबको सुनाएं। लेट अस क्रिएट ऑन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड। आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जो आपके साथ ही आपके देश, हम सबका देश भारत को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दे। और इसके लिए हमें ग्लोबल ऑडियंस को भी एंगेज करना होगा, दुनिया की यूनिवर्सिटीज के साथ, दुनिया के नौजवानों के साथ जुड़ना होगा। आज पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते।
1: Meanwhile, Netflix India has said the two leaders discussed their shared vision of taking India's media and entertainment industry to the global stage. Students intensified their protest over alleged irregularities in recruitment examinations in Jharkhand. Ahead of the monsoon session of the State Assembly set to begin today, 5 protesters, including 2 women, joined Jharkhand Loktantrik Krantikari Morcha leader Devendranath Mehto, who has been on

अरे बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। लोकसभा की कार्यवाही नीट मामले पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर लोकसभा ने हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इन दुखद परमाणु हमलों के आज 81 वर्ष पूरे हो गए हैं।
1: आज से 81 वर्ष पूर्व जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर क्रमशः 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। इस अभूतपूर्व त्रासदी में लाखों निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गंवाए तथा असंख्य लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है।
0: इसके बाद श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो प्रत्येक सदस्य को मुद्दे उठाने का अवसर प्रदान करता है। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी इन्हीं मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही 11:00 बजे शुरू हुई। इस दौरान मंत्रियों ने सदन के पटल पर कई दस्तावेज रखे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन के प्रत्येक सदस्य से मर्यादा बनाए रखने और प्रासंगिक विषयों पर ही बोलने की अपेक्षा की जाती है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सदस्य अपने विचार स्वतंत्र रूप से रख सकता है, लेकिन ये व्यवस्थित और सार्थक ढंग से होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में और ढील देने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने आशीष मिश्रा की याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस स्तर पर जमानत की शर्तों में बदलाव या ढील देने का कोई आधार नहीं बनता है। मौसम विभाग ने बताया है कि केरलम के सभी जिलों में आज और कल तेज बारिश जारी रहेगी। कासरगोड, कन्नूर, इडुक्की, एर्णाकुलम, कोट्टायम, आलापुझा और पथनमथिट्टा जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अन्य सभी 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश होने की चेतावनी को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने देहरादून, चमोली और बागेश्वर जिलों में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट तथा राज्य के अन्य हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के कारण चमोली और बागेश्वर जिलों में आज 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों का जलस्तर घटा है। हालांकि तेज बारिश के कारण भुवनेश्वर के कई इलाकों में जलभराव हो गया है। मौसम विभाग ने राज्य में

0: फिर से तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और पुनर्वास का काम जारी है। प्रशासन ने अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि असम में आई बाढ़ से तबाही के बाद सामान्य स्थिति बहाल होने में समय लगेगा। उन्होंने प्रभावित लोगों को केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय सहायता, पुनर्वास और मुआवजे सहित हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह का कल रात लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे बलिया जिले की रसला विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते थे और उत्तर प्रदेश विधानसभा में बसपा के एकमात्र विधायक थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव और टी धरणीधर ने अंतिम दौर में जगह बना ली है। डिस्कस थ्रो खिलाड़ी अमानत कंबोज भी अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। आशीष ने पुरुषों के समूह ए में शानदार प्रदर्शन करते हुए 69.87 मीटर थ्रो के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। महिलाओं के डिस्कस थ्रो में अमानत ने 52.58 मीटर का सीजन का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करते हुए समूह ए में छठा स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The Lok Sabha has been adjourned till 2 p.m. following opposition ruckus over several issues, including alleged police action during students' protests over the NEET issue. When the House met at 11 a.m., the lower house paid tributes to the victims of the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki. Lok Sabha Speaker Om Birla stated that today marks 81 years of the tragic atomic bombings in Japan.
2: '81 years ago, in Hiroshima and Nagasaki cities of Japan, on 6th and 9th August 1945, atomic bombs were dropped. In this terrible tragedy, lakhs of innocent people lost their lives and innumerable people were seriously injured. This house reaffirms its commitment to freeing the world from weapons of mass destruction.
1: The House also observed silence in memory of the victims of the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki. After that, Mr. Birla tried to take up the question hour, but the opposition members raised the issue of alleged police action during students' protests. The opposition members were demanding a statement from Union Home Minister Amit Shah on the issue. The Speaker said question hour is an important part of the proceedings, which provides every member an opportunity to raise issues. As the pandemonium continued, the Lok Sabha was adjourned till 2 p.m. The Rajya Sabha has been adjourned till 2:15 p.m. following opposition ruckus over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET issue. When the House reassembled after the first adjournment at 12 noon, Chairman C.P. Radhakrishnan took up the question hour amid opposition uproar. Union Tourism Minister Gajendra Singh Shekhawat replied to a question related to tourism infrastructure in mountains and borders. He said his ministry has advised states to develop a coordinated grid system to ensure adequate medical preparedness, necessary precautions and timely evacuation facilities in case of emergencies. Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal replied to a question related to posts and vacancies in courts. During the question hour, the opposition members continued with their sloganeering. As the pandemonium continued, the chairman adjourned the house till 2:15 p.m. BJP MP and chairperson of the Parliamentary Standing Committee on Communications and Information Technology, Nishikant Dubey, has termed Meta CEO Mark Zuckerberg's apology a victory for India's laws, constitution and parliament. Talking to reporters at Parliament premises, he said it demonstrates that anyone wishing to do business in India must abide by Indian law.
3: This is a victory for India's laws, constitution and parliament. It demonstrates the strength of the Prime Minister who leads 140 crore people that anyone wishing to do business in India must abide by the Indian law.
1: The Supreme Court today refused to further relax the bail conditions of Ashish Mishra, the prime accused in the 2021 Lakhimpur Kheri violence case. A bench comprising Chief Justice

0: ଆକାଶବାଣୀ ଭାବନୀ ପଠନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶକ୍ତି ରୂପ। ଆଜି ଏଥିରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସିଧା ପ୍ରସାରଣରେ ଫୋନ୍ ଇନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହି ବିରତି ପରେ।
1: ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ହାଇ ସାଲାରୀ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ରେ।
2: ଆରେ ୱାଓ
3: अजना लिंक्स उपरे क्लिक करंतु नाही। आरबीआई कहे
4: सचेतन हुंतु सतर्क रुहंतु।
5: ए कहानी एक फोटोग्राफर अवतार अंतरात्मार।
6: ओ लवली वेल डन।
5: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
6: एबे हेबो बडा स्टूडियो नुआ कैमरा नुआ लाइट्स
5: ता साथिरे नुआ कार भी नै नियो सेही लोन रे
6: ना लोन नैथिबा काम रे लगाओ ठीक समय रे ईएमआई भरो क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ परवर्ती लोन सहजरे पाओ
5: कार नुहे तुमरो फोटो ही नहीं जाओ
6: आपना के
4: आरबीआई कहे
5: आर्थिक बुद्धिमता जहारी से समृद्ध नारी।
0: शक्ति रूपर सीधा प्रसारण रे फोन इन प्लीज कार्यक्रम सुनिबे पई एथरो आपन मन को हमें नहीं जाउछु हमरो टॉक स्टूडियो को।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हेलो।
1: हाँ हेलो अपा,
0: हाँ
1: नमस्कार।
0: स्वर्णप्रभा भौणी, केमती अच्छन्ती?
1: मु भल अच्छी अपा, तो भल अच्छे। आपण मान समस्ते केमती अच्छा?
0: हाँ आमे समस्ते भी भल अच्छु। आज को गीत शुणिबे?
1: आजी तो मु तो गीत शुणी पानी अपा, सत कहले तो लगे
0: आज
1: लगे सेटा
0: अच्छी
1: भी शुणी
0: चिन्हा
1: पारनी
0: चिन्हा आउ फगुण फगुण परी,
1: अपा।
0: चिन्हा चिन्हा आउ फगुण फगुण परी।
1: चिन्ना चिन्ना
0: हाँ कोटा
1: हाँ
0: शुणिबे
1: चिन्ना
0: आपण?
1: चिन्ना र गीत शुणा। चिन्ना चिन्हार भल भल गीत सब अच्छे एटा
0: हाँ।
1: तो। चिन्ना चिन्हार प्रणव
0: नहीं
1: पटनायक
0: चिन्हा
1: गायथिला गीत
0: अचिन्हा
1: जान
0: फिल्म नुह,
1: माझी जा,
0: एटा
1: से गीतटा शुणा।
0: एटा लघु संगीत, चिन्हा चिन्हा गीतर ना।
1: लघु संगीत कहले
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: आ
0: हाँ
1: मु फिर चलचित्र बुझुथिली। हाँ तो सही हाँ से चिन्हा चिन्हा कि कौन कहते सेथिरो गीतटे
0: हाँ हाँ
1: शुणवा आपा
0: आ कौन करुथिले?
1: कि ना आपा ये तो ट्राए करूली आपणको ए केन्द्र को तो आज नारी महल अच्छी ट्राए करूली तो से आरो नंबर तो लागुनी तो ए नंबर व्यस्त कहूला तो एबे
0: हाँ हाँ
1: लागिगला आपा।
0: नहीं अन्य भौणी मैंने कथा होता ना,
1: हाँ
0: तो
1: नहीं
0: सेथिपाइन
1: से
0: टिके
1: आगु
0: व्यस्त
1: से नंबर
0: बताइछे।
1: जो 2 3 सेटा तो हो नहीं अपा।
0: हाँ हाँ हाँ बड़े बड़े नेटवर्क प्रॉब्लम हेले फोन टिके लागे नहीं।
1: हाँ वर्षा भी हो जो प्रबल वर्षा हो आम आड़े
0: आपण कर सिटी
1: वर्षा।

0: meetings amid opposition ruckus over several issues. Rajya Sabha adjourned till 2:15. Bombay High Court convicts former Tehalka editor Tarun Tejpal in 2013 sexual assault case. Amarnath Yatra resumes after day-long suspension due to security reasons. Orange alert issued for very heavy rainfall over Uttarakhand, Jharkhand, Odisha, Madhya Maharashtra, Konkan and Goa today. Hockey India announces 18-member junior women's team for AHF Asia Cup 2026 to be held in Mochi, China from August 30th. Javelin throwers Ashish Yadav and T. Dharanidharan, along with discus thrower Amanat Kamboj, storm into finals of World Athletics Under 20 Championships. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के बंबई उच्च न्यायालय ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू उत्तराखंड झारखंड ओडिशा मध्य महाराष्ट्र कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट हॉकी इंडिया ने 30 अगस्त से चीन के मोकी में होने वाले एएचएफ एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव टी धरानीधरन तथा डिस्कस थ्रो में अमानत कंबोज ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई अब समाचार विस्तार से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मामले पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई लोकसभा में आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इन दुखद हमलों के आज 81 वर्ष पूरे हो गए हैं
2: आज से 81 वर्ष पूर्व जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर क्रमशः 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे इस अभूतपूर्व त्रासदी में लाखों निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गंवाए तथा असंख्य लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है
1: बाद में श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो प्रत्येक सदस्य को मुद्दे उठाने का अवसर प्रदान करता है विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित हो गई है उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2:15 के लिए स्थगित की गई इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाया पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पर्वतीय और सीमावर्ती पर्यटन अवसंरचना से जुड़े प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि केंद्र ने राज्यों को प्रमुख साहसिक पर्यटन स्थलों पर स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की सलाह दी है विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायालयों में स्वीकृत पदों और रिक्तियों से जुड़े प्रश्नों का उत्तर दिया संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन के प्रत्येक सदस्य से मर्यादा बनाए रखने और प्रासंगिक विषयों पर ही बोलने की अपेक्षा की जाती है
3: जब काउंसिल की बैठक चल रही हो कोई भी इस प्रकार की अव्यवस्था शोरगुल या किसी अन्य तरीके से इस अव्यवस्थित तरीके से बोलते समय किसी अन्य सदस्य के बीच में बाधा नहीं डालेगा
1: विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन आज 13वें दिन में प्रवेश कर गया है रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अपनी मांगों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है इस बीच मानसून सत्र के पहले दिन झारखंड विधानसभा के अंदर और बाहर इस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ एक रिपोर्ट
4: झारखंड विधानसभा सत्र के पहले दिन भाजपा और एनडीए विधायकों ने

0: जेपीएससी परीक्षा विवाद को लेकर परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे और सीबीआई जांच की मांग की। वहीं मंत्री चंद्रा नंदा ने कहा कि इस मामले में सत्ता या विपक्ष नहीं बल्कि परीक्षा माफिया असली दोषी है। इस बीच मामले की जाँच कर रही सीआईडी ने रांची और लखनऊ से 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें टीडीपीएल कंपनी का अकाउंटेंट भी शामिल है। मामले में अब तक कुल 19 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। विवाद को सुलझाने के लिए सरकार की 4 मंत्रियों वाली उच्च स्तरीय कमेटी आज छात्रों के साथ वार्ता कर सकती है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महवेश रहमान।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं से केंद्र सरकार के उस हलफनामे पर जवाब दाखिल करने को कहा है, जिसमें कहा गया है कि नीट स्नातक परीक्षा को पेपर आधारित परीक्षा से कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बदलने पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं में डॉक्टर्स एसोसिएशन भी शामिल है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने अगली सुनवाई 19 अगस्त को निर्धारित की है। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि वो नीट स्नातक परीक्षा को कंप्यूटर आधारित प्रारूप में आयोजित करने पर

0: स्नातक परीक्षा को पेपर आधारित परीक्षा से कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बदलने पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं में डॉक्टर्स एसोसिएशन भी शामिल है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने अगली सुनवाई 19 अगस्त को निर्धारित की है। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि वो नीट स्नातक परीक्षा को कंप्यूटर आधारित प्रारूप में आयोजित करने पर विचार कर रही है, या तो एक चरण में या फिर संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य और उन्नत के समान दो चरणों में। सरकार ने कहा कि उसने पेपर लीक और प्रणालीगत खामियों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के संचालन में व्यापक सुधार किया है। पीठ ने कहा है कि वो सभी पहलुओं पर विचार करेगी और सभी पक्षों से अपने जवाब और सुझाव दाखिल करने के लिए कहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बंबई उच्च न्यायालय ने तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपनी कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में आज दोषी ठहराया है। न्यायालय की गोवा बेंच की जस्टिस नीला गोखले और अमित जमसंदकर की खंडपीठ ने तेजपाल को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दोषी पाया है। इनमें विश्वास या अधिकार के पद का दुरुपयोग कर दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न और किसी महिला को निर्वस्त्र करने की नियत से हमला करने से संबंधित धाराएं शामिल हैं। गोवा सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से अधिकतम सजा देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इससे एक कड़ा संदेश जाएगा कि ना का मतलब ना होता है। फैसले के बाद तेजपाल ने कहा कि वो उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में और ढील देने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने आशीष मिश्रा की याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस स्तर पर जमानत की शर्तों में बदलाव या ढील देने का कोई आधार नहीं बनता है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि पोत सुरक्षा का माहौल तेजी से बदल रहा है। उन्होंने कहा कि साइबर खतरे, ड्रोन हमले, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, डिजिटल नेटवर्क, सूचना प्रणालियों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को होने वाले जोखिमों ने समुद्री सुरक्षा को नया आयाम दिया है। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पोत सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि बंदरगाह की सुरक्षा एक साझा राष्ट्रीय जिम्मेदारी है।
1: There is actionable recommendation to strengthen India's port security framework and make the proposed Bureau of Port Security a robust, responsive and future-ready institution. Let us work together for a safe maritime India, a strong maritime India and a viksit Bharat. Kyunki desh ki suraksha sarvopari hai aur hum desh ke liye जी रहा हूं और देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे, दैट शुड बी द कमिटमेंट।
0: भाजपा सांसद तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग की माफी को भारतीय संसद की जीत बताया है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत में व्यापार करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को भारतीय कानून का पालन करना होगा।
2: ये जो जीत है ये भारत के कानून की जीत है, ये जीत भारत के संविधान की, ये जीत भारत के पार्लियामेंट की है और 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी की ये ताकत दिखाता है कि भारत में जिसको भी व्यापार करना है उसको भारत का कानून मानना पड़ेगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में मुख्य रूप से प्रादेशिक सेना पर बात की गई। बैठक को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने केरलम बाढ़, ओडिशा चक्रवात और हाल ही में असम में आई बाढ़ के दौरान राहत और बचाव कार्य तथा जरूरतमंदों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने में प्रादेशिक सेना की भूमिका की सराहना की। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अब तक लाखों श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं।
3: अब तक 4,70,000 से ज्यादा यात्री पवित्र गुफा का दर्शन कर चुके हैं। हर दिन हजारों की तादाद में यात्री, जिनमें मर्द, औरतें, बच्चे वगैरह शामिल हैं, इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। फिलहाल यात्रा सिर्फ बालतल के रास्ते से ही जारी है क्योंकि पहलगाम रास्ते पर मरम्मत का काम चल रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से चलाने के लिए सुरक्षा बलों, श्री अमरनाथ जी श्राइन

0: बोर्ड प्रशासन और आम शहरियों की सराहना की है याद रहे ये यात्रा 28 अगस्त को संपन्न होगी श्रीनगर से इश्फाक शाह
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं ये आकाशवाणी है मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड झारखंड पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र ओडिशा मध्य महाराष्ट्र कोंकण और गोवा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है विभाग के अनुसार बिहार छत्तीसगढ़ राजस्थान हिमाचल प्रदेश मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल तक मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित है भूस्खलन के कारण कई स्थानों पर सड़क संपर्क टूट गया है वहीं प्रमुख नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है
2: प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कल रात से जारी बारिश के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर भूस्खलन से सड़कें बाधित हुई हैं। कुछ मैदानी क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति भी देखी गई है राज्य की प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ा है और कई गाढ़ गडेरे भी उफान पर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी आपदा प्रबंधन और राहत एजेंसियों को पूरी तरह सतर्कता बरतने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में नदी नालों पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया है कि
3: बरसात के लिए आज देहरादून बागेश्वर और चमोली के लिए ऑरेंज अलर्ट है बरसात लगातार चल रही है कई जनपदों में हो रही है और नदियों के जलस्तर की बात करें तो वर्तमान में अलकनंदा मंदाकिनी भागीरथी वाणगंगा यमुना और शारदा का स्तर बढ़ रहा है
2: इस बीच चारधाम यात्रा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जारी है और प्रशासन यात्रा मार्गों की स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए हुए है साक्षी सिंह आकाशवाणी समाचार देहरादून
1: उधर ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है हमारे संवाददाता ने बताया कि जलाशय का स्तर बनाए रखने के लिए हीराकुंड बांध के 8 द्वार खुले हुए हैं
4: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है क्योंकि महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों में बाढ़ का पानी कम हो रहा है अभी जलाशय का स्तर बनाए रखने के लिए हीराकुंड बांध के 8 स्लुइस गेट खुले हुए हैं पानी का स्तर घटने के बावजूद बाढ़ से प्रभावित लोगों की मुश्किलें बनी हुई है और सामान्य जीवन को बहाल करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है इस बीच कल रात से हो रही लगातार भारी बारिश ने राजधानी भुवनेश्वर में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है शहर की कई सड़कों और निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है जिससे घरेलू सामान को नुकसान पहुंचा है हालांकि दक्षिणी और पश्चिमी उड़ीसा में बारिश कम होने की उम्मीद है प्रकाश दास आकाशवाणी समाचार भुवनेश्वर
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि असम में आई बाढ़ के बाद स्थिति बहाल होने में समय लगेगा उन्होंने प्रभावित लोगों को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया मौसम विभाग ने कहा है कि केरलम के सभी जिलों में आज और कल तेज बारिश जारी रहेगी कासरगोड कन्नूर इडुक्की एर्णाकुलम कोट्टायम आलापुझा और पथनमथिट्टा जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संस्कृत के श्लोक को साझा करते हुए कहा कि जिसमें सभी प्रकार के श्रेष्ठ वनस्पतियों तथा औषधियां पैदा होती हैं वो पृथ्वी माता विस्तृत और स्थिर हो विद्या शौर्य सत्य स्नेह आदि सद्गुणों से पालित पोषित कल्याणकारी और सुख साधनों को देने वाली मातृभूमि की हम सदैव सेवा करेंगे भारतीय हॉकी ने 30 अगस्त से 13 सितंबर तक चीन में होने वाले एएचएफ जूनियर एशिया कप 2026 के लिए 18 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है टीम में दो खिलाड़ियों को विकल्प के तौर पर रखा गया है अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव और टी धारणीधर ने अंतिम दौर में जगह बना ली है डिस्कस थ्रो खिलाड़ी अमानत कंबोज भी अंतिम दौर में पहुंच गई हैं घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में सेंसेक्स में मामूली बढ़त दर्ज की गई अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 209 अंक बढ़कर 78,790 पर जबकि निफ्टी 10 अंक गिरकर 24,635 पर था अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए और राज्यसभा की बैठक दोपहर 3:15 तक के लिए स्थगित बंबई उच्च न्यायालय ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू उत्तराखंड झारखंड ओडिशा मध्य महाराष्ट्र कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट हॉकी इंडिया ने 30 अगस्त से चीन के मौके में होने वाले एएचएफ एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय महिला टीम की घोषणा की और भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव टी धारणीधरन और डिस्कस थ्रो में अमानत कंबोज ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ नमस्कार

0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। नीट मामले पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर लोकसभा की कार्यवाही कल तक स्थगित कर दी गई। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इन दुखद हमलों के आज 81 वर्ष पूरे हो गए हैं। राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाया। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पर्वती और सीमावर्ती पर्यटन अवसंरचना से जुड़े प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि केंद्र ने राज्यों को प्रमुख साहसिक पर्यटन स्थलों पर स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की सलाह दी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायालयों में स्वीकृत पदों और रिक्तियों से जुड़े प्रश्न का उत्तर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन के प्रत्येक सदस्य से मर्यादा बनाए रखने और प्रासंगिक विषयों पर बोलने की अपेक्षा की जाती है।
1: जब काउंसिल की बैठक चल रही हो, कोई भी इस प्रकार की अव्यवस्था, शोरगुल या किसी अन्य तरीके से इस अव्यवस्थित तरीके से बोलते समय किसी अन्य सदस्य के बीच में बाधा नहीं डालेगा।
0: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन आज 13वें दिन में प्रवेश कर गया। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अपनी मांगों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच मॉनसून सत्र के पहले दिन झारखंड विधानसभा के अंदर और बाहर इस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ। बम्बई उच्च न्यायालय ने तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपनी कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में आज दोषी ठहराया। न्यायालय की गोवा बेंच के जस्टिस नीला गोखले और अमित जमसंदकर की खंडपीठ ने तेजपाल को भारतीय दंड संहिता की उन धाराओं के तहत दोषी पाया जो विश्वास या अधिकार के पद पर रहते हुए दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न और किसी महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला करने से संबंधित हैं। गोवा सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से अधिकतम सजा देने का आग्रह करते हुए कहा कि इससे एक कड़ा संदेश जाएगा कि ना का मतलब ना होता है। फैसले के बाद तेजपाल ने कहा कि वो उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में मुख्य रूप से प्रादेशिक सेना पर बात की गई। बैठक में बल को और मजबूत करने तथा इसकी समग्र प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए बहुमूल्य सुझाव दिए गए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि प्रादेशिक सेना नागरिक सैनिक अवधारणा का जीता जागता उदाहरण है। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के स्थगन के बाद फिर से शुरू हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस वर्ष अब तक देश भर से लाखों श्रद्धालु पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन कर चुके हैं।
2: अब तक 4,70,000 से ज्यादा यात्री पवित्र गुफा का दर्शन कर चुके हैं। हर दिन हजारों की तादाद में यात्री, जिनमें मर्द, औरतें, बच्चे वगैरह शामिल हैं, इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। फिलहाल यात्रा सिर्फ बालतल के रास्ते से ही जारी है क्योंकि पहलगाम रास्ते पर मरम्मत का काम चल रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से चलाने के लिए सुरक्षा बलों, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, प्रशासन और आम शहरियों की सराहना की है। याद रहे, ये यात्रा 28 अगस्त को सम्पन्न होगी।
0: मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। भारतीय हॉकी ने 30 अगस्त से 13 सितंबर तक चीन में होने वाले AHF जूनियर एशिया कप 2026 के लिए 18 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की है। टीम में दो खिलाड़ियों को विकल्प के तौर पर रखा गया है। मिडफील्डर खैदम शेलेमा चानू टीम की कप्तानी करेंगी। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव और टी धारणीधर ने फाइनल में जगह बना ली है। डिस्कस थ्रो खिलाड़ी अमानत कंबोज भी अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोता मित्रों को मेरा यानी अजीत का नमस्कार। श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से कुशल देव पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है, आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, शरीर ईश्वर की दी हुई सबसे अनमोल संपत्ति है, इसकी रक्षा धन से भी अधिक

जरूरी है, क्योंकि बिगड़ी सेहत के आगे दौलत भी हार मान लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम चरौदा बार नवापारा अभारण्य जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर। अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। केंद्रपाड़ा ओडिशा से हमारे चिरपरिचित श्रोता देशदीप दास जी का संदेश हमें मिला है। और उसके साथ साथ संदेश भेजने वाले हैं कुटकुटिया नायक, शुभम नायक और सत्यजीत नायक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। आगे चलते हैं, अगला संदेश हमें मिला है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे जी का। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी का। श्रोताओं आप सबके संदेशों के लिए हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी आज की चर्चा में। तो एक बहुत ही रोचक हमारी चर्चा होने वाली है, आइए करते हैं शुरुआत। श्रोताओं एक प्रश्न कभी किसी ने मुझसे पूछा था कि बताइए अजीत जी, आखिरी बार आपने बिना काम के किस दोस्त से कब मुलाकात की? तो मैंने हंसते हुए उत्तर दिया था कि इतना कठिन सवाल ना पूछिए, बड़ी व्यस्त जिंदगी है, बिना काम के भला किसी से मिलने का समय कहाँ। जी हाँ श्रोताओं, यही तो समस्या है। लेकिन एक बात और है, लोग अक्सर कहते हैं हम तो हमेशा जुड़े रहते हैं। जी हाँ, लोगों का कहना भी ठीक है कि वो हमेशा जुड़े रहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि अब लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, वास्तविक जिंदगी में शायद नहीं के बराबर। तो श्रोताओं आइए चलते हैं एक घर पर और देखते हैं एक दृश्य। दृश्य कुछ इस प्रकार से है, आप कल्पना करें, पिताजी मोबाइल पर अखबार पढ़ रहे हैं, माताजी शॉपिंग ऐप देख रही हैं, बेटा गेम खेल रहा है, बेटी रील बना रही है और बेचारे बुजुर्ग दादाजी सबको देख रहे हैं कि कोई कम से कम उनसे दो मिनट बात तो कर ले। श्रोताओं ये काल्पनिक दृश्य था, लेकिन क्या आपने खास बात पर गौर किया कि माता पिता, बेटा बेटी और दादाजी सब एक साथ एक ही घर में हैं, लेकिन उनके बीच में संवाद नहीं हो रहा है। अब लोग कहते हैं कि भाई समय ही नहीं मिलता। तो श्रोताओं एक सवाल मैं अपने आप से पूछना चाहूंगा और आपसे भी कि 3 घंटे सोशल मीडिया के लिए हमें समय कैसे मिल जाता है? अब क्रिकेट का मैच तो पूरा पूरा देख ही लेते हैं, लेकिन आपस में 10 मिनट भी बात करने का हमारे पास समय नहीं है। और शायद यही कारण है कि आज समाज में तनाव भी है और बहुत सारी समस्याएं भी खड़ी हो गई हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है श्रोताओं कि क्या किया जा सकता है। तो चलिए श्रोताओं आज से ही एक प्रयोग करते हैं। आप पूछेंगे भला वो क्या? तो श्रोताओं वो प्रयोग कुछ इस प्रकार से होगा कि चलिए आज ही समय निकाल कर मोबाइल को आधे घंटे के लिए बंद कर देते हैं या साइलेंट कर देते हैं। आप पूछेंगे फिर क्या करें? तो मैं कहूँगा कि तो शुरुआत करते हैं अपने ही घर से, अपने माता पिता, दादा दादी या बच्चों के साथ बैठकर थोड़ा समय निकालते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कम से कम आधे घंटे से शुरुआत तो हो ही सकती है। फिर फोन को ऑन करते हैं। आप कहेंगे श्रोताओ अभी आपने कहा फोन ऑफ करो और अब कहते हैं कि ऑन करते हैं, ये भला कैसी बात है? यही तो बात है श्रोताओ, फोन ऑन करके किसी ऐसे मित्र या रिश्तेदार या प्रियजन को फोन मिलाते हैं और उनका हालचाल पूछते हैं। ध्यान रहे इस समय आपको उनसे बात करनी है जिनसे लंबे समय से बात ही नहीं हुई। आप अपने घर के बुजुर्गों से भी बात कर सकते हैं जिनके शायद कई बार आपको या मुझे समय नहीं मिलता। खासतौर से श्रोताओं मैं अपने विद्यार्थी श्रोताओं से कहना चाहूंगा कि अपने बड़ों से बातचीत का समय जरूर निकालिए, उनके अनुभवों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। विश्वास करें श्रोताओं जब आप फोन करेंगे तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान आएगी ना और आपको जो खुशी मिलेगी उसकी तुलना किसी और बात से हो ही नहीं सकती। तो आइए 5 आसान उपाय जानते हैं कि कैसे हम मोबाइल का सदुपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, रोज कम से कम 20 मिनट परिवार के साथ। दूसरी बात, भोजन के समय मोबाइल को दूर रखें। अक्सर होता यह है कि खाना भी खा रहे होते हैं और साथ में मोबाइल भी चल रहा होता है। नहीं, ऐसा ना करें, मोबाइल को खाने के समय बिल्कुल दूर रखें। तीसरी बात यह हो सकती है कि सप्ताह में एक दिन किसी रिश्तेदार या मित्र से मिलें या उससे बातचीत करें। और चौथी बात है, महीने में एक बार पूरे परिवार के साथ छोटी सी सैर या भोजन करने का कार्यक्रम बनाइए। याद रखिए, रिश्ते अपने आप नहीं चलते, उन्हें समय देना पड़ता है। जैसे हम रोज मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं ना, उसी तरह। जी, उसी प्रकार रिश्तों की बैटरी को भी प्यार, समय और अपनेपन से चार्ज करना पड़ता है। तो एक काम करें, आज ही अपने किसी को समय दीजिए। डिजिटल दुनिया में रहते हुए भी मानवीय रिश्तों को जिंदा रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ। तो श्रोताओं हमें आशा है कि आपको

0: हमारी बातचीत जरूर पसंद आई होगी। अब आपके लिए कुछ करने को। आज के व्यस्त जीवन में हम एक दूसरे को समय कैसे दे सकते हैं, इस विषय पर 3 से 4 पंक्तियों में एक लघु लेख या छोटी सी कविता लिखें। विषय एक बार फिर से सुन लें। आज के व्यस्त जीवन में हम एक दूसरे को समय कैसे दे सकते हैं, इस विषय पर 3 से 4 पंक्तियों में एक लघु लेख या छोटी कविता लिखें। भेज दीजिए अपना लघु लेख या कविता हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और जी, आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं। श्रोताओं, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो YouTube में जाइए, टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। आपको वहां सर्च के लिए विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पुस्तकों को डाउनलोड कीजिए। एक और जरूरी सूचना आपको दे दें श्रोताओं, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां भी अपनी मनचाही पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं। जी, और इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। श्रोताओं, अब समय है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों का, तो आइए सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम असम का प्रकृति पर्व बिहू। कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में असम के उल्लास पर्व बिहू के बारे में रोचक जानकारी दी गई है और इसे मनाए जाने के तरीकों और इसकी प्राचीन पृष्ठभूमि के बारे भी बताया गया है।
1: May I come in, Mr. Henry?
2: Yes, sure. अंदर आइए, आपका स्वागत है।
1: आपने बुलाया था सर?
2: जी, मैंने आपको बुलाया था। I have a good news for you. आपने असम के डांस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए लंदन की ब्रिटिश अकादमी को जो ग्रांट की रिक्वेस्ट भेजी थी वह मंजूर हो गई है। ये रहे पेपर्स।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद।
2: ऑल द बेस्ट, असम जाने की तैयारी कीजिए।
1: थैंक यू सर, थैंक यू।
3: एंजेला का परिवार दिल्ली से था, लेकिन अब बहुत समय पहले से वो सभी लंदन में ही बस गए थे। एंजेला डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्मात्री थीं और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जाकर वहाँ की संस्कृतियों पर डॉक्यूमेंट्री बनाना उनका काम था।
1: सबसे ज्यादा खुशी उनकी बेटी कोमल को हुई, क्योंकि वो भी अपनी माँ के साथ भारत जा रही थी। कोमल इंग्लैंड में ही पैदा हुई थी, वो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी धारा प्रवाह बोल लेती है। और आखिर आ ही गया वो दिन असम जाने का। लंदन से दिल्ली होते हुए वे गुवाहाटी पहुंचे। शाम को डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए निर्धारित कैमरा टीम भी आ चुकी थी। एंजेला ने उन्हें आलेख पढ़कर सुनाया और शूटिंग से संबंधित आवश्यक निर्देश भी दिए।
3: दूसरे दिन वो गुवाहाटी शहर के आसपास कुछ ग्रामीण इलाकों में भी घूमने गए। बाजार हाट फुल्लम गामोसा और भिन्न भिन्न प्रकार के पकवानों से पटे हुए थे।
1: फुल्लम गामोसा एक प्रकार का हाथ का बुना हुआ सूती गमछा है, जिसकी किनारी लाल रंग की होती है। असमिया लोग इसे पारंपरिक रूप से सम्मान और आदर के प्रतीक के रूप में बड़ों को भेंट करते हैं।
3: आज कोमल बहुत उत्साहित है। बिहू का त्योहार जो है, ब्रिटिश दूतावास के सौजन्य से एंजेला को आज असम की जानी मानी सांस्कृतिक आयोजन समिति की ओर से विशेष निमंत्रण भेजा गया है। आज के विशेष बिहू कार्यक्रम के दौरान वो विशेष अतिथि भी होंगी और डॉक्यूमेंट्री की निर्मात्री भी। उत्सव चल रहा था।
4: नमस्कार, मैं हूं मृगेन बरुआ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और खास स्वागत है हमारी खास अतिथि एंजेला जी और उनकी बेटी कोमल का। तो सबसे पहले हम पेश कर रहे हैं बिहू पर्व का एक खास नाटक।
5: आज महाराज ने कुछ

0: खास आदिवासी समूहों को बुलाया है।
1: सुना है वो बहुत अच्छा नृत्य करते हैं।
0: भाई जो भी हो, हमारे महाराज हैं बड़े कला प्रेमी।
2: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: चलो देखते हैं क्या क्या होता है।
2: जी जी चलो चलो देखते हैं।
1: चलो चलो चलो चलो, आओ, आओ। चलो चलो जल्दी चलो।
3: अहोम के महाराज की जय हो।
4: जय हो जय हो।
3: जैसा कि महाराज ने इच्छा व्यक्त की थी, आज हमारे बीच दिमासा कछारी आदिवासियों का समूह पधारा है अपने पारंपरिक कृषि नृत्य बीशु के साथ।
5: नृत्य प्रस्तुत किया जाए।

0: Frankfurt. अति सुंदर। हम इस नृत्य प्रस्तुति के साक्षी होकर धन्य हुए। महामंत्री
1: जी, आज्ञा महाराज।
0: मेरी आज्ञा से प्रजा में यह संदेश भेज दिया जाए कि आज के बाद से फसलों की कटनी के बाद प्रकृति माता को आभार प्रकट करने के लिए समस्त अहोम राज्य में विशु नृत्य विधिवत किया जाएगा।
2: महाराज की
3: जय हो।
2: महाराज की
3: जय हो।
2: महाराज की
3: जय हो।
4: तो साथियों, कैसा लगा आपको ये नाटक? अब दीजिए अपने साथी मृगेन को आज्ञा, लेकिन जाने से पहले एक दूसरे से मिलना जुलना मत भूलिएगा। आपके लिए हमने खास तौर से रखा है बिहू मिलन कार्यक्रम।
5: बिहू मिलन समारोह चल रहा था और साथ ही साथ एंजेला की टीम शूटिंग में भी लगी हुई थी। अब बारी थी रेडियो साक्षात्कार की। आइए सुनते हैं एंजेला, कोमल और मृगेन का ये वार्तालाप।
6: मृगेन जी, आज का बिहू उत्सव बहुत ही सुंदर था। आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। नाटक में आपने अहोम राज्य के बारे में बताया, इस पर थोड़ी जानकारी और दीजिए ना।
4: जी एंजेला जी, अहोम राज्य का काल 1200 सामान्य संवत से 1700 सामान्य संवत तक रहा।
6: अच्छा।
4: माना जाता है कि यही अहोम नाम आगे चलकर असोम कहलाया और कालांतर में असम हो गया। प्राचीन शास्त्रों में असम का उल्लेख प्राग ज्योतिषपुर नाम से किया गया है।
6: मृगेन जी, इस त्योहार का नाम बिहू क्यों पड़ा?
4: बहुत अच्छा सवाल। देखिए, शुरू में इस आदिवासी नृत्य को बिशु नृत्य कहते थे। बाद में यही बिशु नाम बिहू के नाम से जाना जाने लगा।
6: सर, मैंने सुना है कि बिहू साल में 3 बार मनाते हैं।
4: सही सुना है कोमल बिटिया। बिहू खेती से संबंधित त्योहार है।
6: ओह।
4: ये असमिया नए साल में वसंत ऋतु के आगमन से शुरू होता है और साल में 3 बार मनाया जाता है। इन्हें सबसे पहले जब किसान बीज बोते हैं, फिर जब वो धान रोपते हैं और फिर जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है। यानी ये त्योहार फसल लगने से लेकर वसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है।
6: अरे वाह। सर, मैंने सुना है कि इन तीनों अवसरों पर त्योहार के अलग अलग नाम हैं।
4: बिल्कुल ठीक कोमल। ये हैं रोंगाली बिहू, जिसे बोहाग बिहू या बैसाख बिहू भी कहते हैं।
6: ओह।
4: ये वसंत की शुरुआत और नव वर्ष का जश्न है जिसमें नृत्य और संगीत शामिल होते हैं। दूसरा बिहू है कोंगाली बिहू। ये एक अधिक गंभीर अवसर है जहां भरपूर फसल के लिए खेतों में दिया जलाकर प्रार्थना की जाती है।
6: अच्छा।
4: तीसरा बिहू भोगाली बिहू कहलाता है, जिसमें खान पान और उत्सव होते हैं।
6: मृगेन जी, आपने तो कोमल के सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छे से दिया। अब मेरा भी एक सवाल है।
5: जी।
6: मैं जानना चाहती हूँ कि बिहू शब्द कहाँ से आया, इसका क्या अर्थ है?
4: एंजेला जी, बिहू शब्द की उत्पत्ति

0: विशु से हुई है
1: जी,
0: जिसका अर्थ है फसल के मौसम में ईश्वर से आशीर्वाद और समृद्धि मांगना।
1: बहुत सुंदर मृगेन जी, इतनी रोचक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आज एंजेला और कोमल लंदन वापस जा रहे हैं। कोमल को अपनी माँ के काम पर गर्व है। उसने ठान लिया है कि वो भी मीडिया कार्यक्रम निर्मात्री बनेगी। जहाज जब बादलों को चीरता हुआ आकाश की ऊंचाइयों पर पहुंचा तो कोमल ने आंखें बंद कर ली और खो गई बिहू की सुखद स्मृति में। उसके मस्तिष्क में अब भी थी बिहू के सुंदर गीतों की गूंज।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम असम का प्रकृति पर्व बिहू।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लौट आई खुशी की खुशी। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को संदेश दिया गया है कि पर्यावरण की संरक्षा में ही हमारी सुरक्षा और खुशहाल जीवन का आधार है।
2: खुशी। खुशी जब पैदा हुई तो उसने अपने सारे घर में खुशियां बिखेर दी।

0: वो बचपन में इतना हंसती और इतना खुश रहती कि घर वालों ने उसका नाम ही खुशी रख दिया। उसको खेलने के लिए खिलौनों की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके खिलौने थे चिड़ियों की चहचहाट, नदियों की कलकल कर बहने की आवाज। उसका खिलौना मानो पूरी प्रकृति थी।
1: वाओ, कितना सुंदर बाग है, कितने सुंदर फूल हैं, और पेड़ भी तो देखो कितने।

जैसे जैसे खुशी बड़ी हो रही थी और समय निकल रहा था, खुशी की खुशी कहीं खो सी गई थी। आइए हम सब मिलकर खुशी की खुशी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। आखिर कहां गई खुशी की खुशी?

0: ये बड़ी हो रही थी और समय निकल रहा था। खुशी की खुशी कहीं खो सी गई थी। आइए हम सब मिलकर खुशी की खुशी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। आखिर कहां गई खुशी की खुशी?
1: खुशी के पापा, पता ही नहीं क्या हो गया है हमारी खुशी बिटिया को। पता नहीं किसकी नजर लग गई है, आजकल बहुत परेशान सी रहती है।
2: कमजोर भी हो गई है।
1: कुछ खाती पीती भी तो नहीं है, कमजोर तो लगेगी ही।
2: ठीक कह रही हो तुम। पहले तो खुशी हरदम चहचहाती रहती थी, लेकिन अब तो कल मैं बाजार से उसके लिए गुड़िया भी लाया था, मिठाई भी लाया था, लेकिन वो अब किसी भी सामान से खुश नहीं है।
1: समझ ही नहीं आता है क्या हो गया इसे।
2: सही कहती हो तुम, जरूर किसी की नजर लगी है मेरी खुशी को।

0: अरे हमारी बिटिया कहाँ है? अरे खुशी बिटिया कहाँ है भाई?
1: अरे भैया
2: नमस्ते नमस्ते मोहन।
0: अरे भाई हमारी खुशी बिटिया दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई?
2: खुशी बेटे
1: खुशी इधर आओ।
3: नमस्ते मामा जी।
0: अरे जीते रहो बेटे जीते रहो, शाबाश।
2: बेटा मामा जी आए हैं, देखो तुम्हारे लिए क्या क्या लाए हैं।
0: हाँ बेटा मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आया।
2: हाँ।
0: देखोगी एक मिनट, कहाँ गया मेरा डब्बा? ये रहा। देखो बेटा ये तुम्हारी मनपसंद रेलगाड़ी है, आई पसंद। और देखो ये भालू ये डमरू बजाता है, देखो देखो कैसे बजाता है। अरे ये तो भूल ही गया था, इतनी प्यारी सी गुड़िया है, परी की तरह लगती है ना। नो शाबाश। अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम तो बिल्कुल खुश नहीं हो। अरे जीजी आखिर हो क्या गया ऐसे? पहले तो ये ऐसी नहीं थी।
1: पता नहीं भैया, हम तो खुद ही बहुत परेशान हैं इसको लेकर। पता नहीं इसे क्या होता जा रहा है, हमेशा गुमसुम रहती है, परेशान रहती है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है।
0: जीजा जी पिछली बार जब मैं आया तो काफी खुश नजर आ रही थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया ऐसे, इतनी कमजोर हो गई है।
2: मोहन जी हम खुद कुछ नहीं समझ पा रहे हैं।
0: तो आप क्यों नहीं किसी डॉक्टर को दिखाते इसे?
2: दिखाया था
0: तो फिर?
2: वो कहते हैं कि नॉर्मल है।
0: हैं? कमाल है, लेकिन मुझे लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। खैर कोई बात नहीं, इसके बारे में भी सोचेंगे। कोई बात नहीं बेटा। बेटा खुशी बेटा देखो तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने, तुम एक काम करो इसे इसे ले लो और अपने कमरे में जाओ।
3: नहीं चाहिए मुझे खिलौने विलौने, मगर मैं जा रही हूं।
0: अरे मगर बेटा ये खिलौने तो ले जाओ। अरे खुशी बेटा ओफो, चली गई बिना खिलौने लिए।
4: आंटी आंटी नमस्ते।
1: नमस्ते बेटा।
4: अंकल नमस्ते।
2: नमस्ते बेटा।
1: खुशी खुशी देखो ताशु आई है तुमसे मिलने।
3: क्या है मामा?
1: देखो ना ताशु आई है।
4: खुशी खेलोगे मेरे साथ?
3: नहीं ताशु आज मेरा खेलने का मन बिल्कुल भी नहीं है।
4: क्या हो गया, तुम तो मेरे साथ खेलते भी नहीं हो।
3: नहीं ताशु मेरा खेलने का मन नहीं है।
4: खेल लो प्लीज।
3: प्लीज ताशु मुझे नहीं खेलना है।
4: प्लीज
3: नहीं।
4: ठीक है फिर मैं मोनू के साथ खेल लूंगी।
3: ठीक है जाओ।
5: कुछ दिनों के बाद खुशी के पिता का तबादला हो जाता है और वो शहर छोड़कर वहां से दूसरे शहर चले जाते हैं जहां शांति थी। अगले दिन खुशी की आंखें नए शहर में खुलती हैं। सुबह सुबह जैसे ही खुशी के कानों में कोयल की आवाज आती है वो खुश हो जाती है।

0: की आवाज सुनने भर से ही खुशी का चेहरा खिल उठता है।
1: वाह चिड़िया, कितनी अच्छी है। तितलियां भी, ये भी बहुत अच्छी हैं। फूल, फूल फिर से, वाह। तोते, तितलियां रंग बिरंगी, लाल पीली हरी, वाह कितना अच्छा है नजारा। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मम्मी मम्मी,
2: क्या बात है, क्या हुआ खुशी?
1: मैं तो बाहर जा रही हूँ अब। अरे वहाँ देखो चिड़िया, तोते, कितने सुंदर हैं।
2: अरे सुन तो,
1: नहीं मैं तो जा रही हूँ।
2: अरे रुक तो सही, कहाँ जा रही है? पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को, आज तो बड़ी खुश नजर आ रही है।
3: एक बार देखे तुमने,
2: हाँ।
3: यहाँ हम जब से आए हैं खुशी की खुशी वापस आ गई है, तो वो बहुत खुश रहती है।
2: सही कहते हो आप।
3: हे ईश्वर, हे भगवान, तुमने हमारी खुशी वापस लौटा दी।
0: अब खुशी के मम्मी पापा को समझने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा कि खुशी की खुशी कहाँ चली गई थी। जहाँ वो पहले रहते थे वहाँ पर हर रोज पेड़ों की कटाई हो रही थी, नई कंपनियां लग रही थी, प्रकृति की खूबसूरती जाने कहाँ चली गई थी। सो खुशी की खुशी भी चली गई थी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी खुशी बनी रहे तो खूब पेड़ लगाइए, वातावरण में खुशी रहेगी तो आपकी खुशी भी बनी रहेगी।
4: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम लौट आई खुशी की खुशी। अब इसी के साथ हमारा उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: प्रचार कलु एनसीईआरटी सीआईटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आकाशवाणी भवानीपाटना। एथर प्रचार करुचु युवश्रोता बंधु मानक कार्यक्रम युववाणी। आज ए रही साप्ताहिक विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम विज्ञानिका शुणिपारे। एक छोट विज्ञापन विरती पर।

0: अपा
1: हाँ?
0: देखो
2: हैप्पी बर्थडे भाई
0: देखा वाह मोरो फेवरेट कलर
3: सब बेले शॉपिंग
0: आई नो मा खर्च करिबार बयस एटा राइट
4: सेविंग करिबार भी बयस एटा
5: आई नो बापा सेव कर उचित जगह रे निवेश कर मूलधन ऊपर सुध मिलिबो जहा को पूर्ण थरे विनियोग करले सुध मिलि चालिथिबो आई नो ना आरबीआई कहे
6: कर सटीक आरंभ हुआ फाइनेंशियली स्मार्ट
7: कम समय रे अधिक फायदा मात्र गोटिए क्लिक रे बढ़िया
5: पसिला
6: अजोना लिंक्स ऊपर क्लिक करंतु नाही आरबीआई कहे
8: सचेतन हुंतु सतर्क रहंतु।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोबर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसके अंतर्गत देश के प्रचुर कृषि अवशेष, पशु गोबर, गन्ना अपशिष्ट, नगरपालिका जैविक अपशिष्ट और अन्य जैव संसाधनों को स्वच्छ ईंधन और जैविक खाद में परिवर्तित कर ग्रामीण आय तथा राष्ट्रीय आर्थिक मूल्य में वृद्धि का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना है।
1: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
0: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चारियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस पर कुल 8,970 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। परियोजना से यात्रा समय घटकर आधा हो जाएगा। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी है। विधेयक

0: में 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई राशि को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन के विनियोजन का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। उधर लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि सरकार विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पूरी तरह से अलग है और इन्हें एक ही नहीं समझना चाहिए। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ 50 लाख से अधिक परिवारों को मिल चुका है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने बताया कि 19 लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। श्री जोशी ने कहा कि योजना के अंतर्गत 12 लाख से अधिक परिवारों ने अतिरिक्त बिजली बेचकर 421 करोड़ रुपये कमाए हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय की गोवा बेंच ने आज तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपनी कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में 10 साल की कड़ी सजा सुनाई। न्यायालय ने तेजपाल पर 10 लाख से अधिक रुपए का जुर्माना भी लगाया जो पीड़िता को दिया जाएगा। न्यायालय की खंडपीठ ने तेजपाल को पद पर रहते हुए दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न का दोषी पाया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में युवा मोर्चा ने सचिवालय तक एक विशाल विरोध मार्च निकाला है। प्रदर्शनकारियों ने लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची में शामिल होने के बावजूद पिछले 2 वर्ष से नियुक्ति पत्र न पाने वाले उम्मीदवारों के लिए न्याय की मांग की। तन्वी शर्मा ने कोरिया मास्टर्स महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्री क्वार्टर में तन्वी ने श्रेयांशी वलिशेट्टी को हराया। अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The Union Cabinet today approved Gobardhan, the National Circular Bioenergy Scheme, with a total outlay of 23,731 crore rupees. Briefing media in New Delhi this afternoon, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the scheme will create 1.5 lakh jobs. He said Gobardhan marks a defining moment in India's clean energy journey. The scheme will establish compressed biogas as a major pillar of India's future energy mix. Mr. Vaishnaw said the Cabinet Committee on Economic Affairs also approved construction of 4-lane highway from Behata Chairali near Guwahati to Tezpur in Assam.
2: Today's second major decision is related to an important highway project in Assam. It is the Behata-Chariali-Tezpur 4-lane highway, stretching from Behata-Chariali, located just outside Guwahati, to Tezpur. The highway will be 135 kilometers long with an investment of approximately 8,970 crore rupees. It will also be connected to the Brahmaputra tunnel in the future.
1: The Parliament has passed the Appropriation No. 3 Bill 2026 with the Rajya Sabha, returning the legislation to the Lok Sabha after a discussion. The Lok Sabha had already passed the bill. When the House assembled at 2:45 p.m. after the second adjournment, Finance Minister Nirmala Sitharaman moved the bill for consideration and return. After completing the business, the Rajya Sabha was adjourned for the day. Earlier in the day, both houses of parliament witnessed repeated adjournments following opposition ruckus over several issues, including alleged police action during students' protest over NEET issue.

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: नाम होचे गौतम सावत, ग्राम हतापुर, पंचायत रणशाली, ब्लॉक पुरस्तंबुर, जिला गंजा। मु प्रधानमंत्री फसल बीमा करितिबा जोगु आर्थिक 85,000 टंका सहायता पाइली। प्रत्येक चाषी भाई भौणी को अनुरोध, समस्ते प्रधानमंत्री फसल बीमा करंतु।
2: खरीफ फसल बीमा पाई शीघ्र पंजीकरण करंतु।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जनसेवा केन्द्र CSC को जोगाजोग करंतु।
2: फसल बीमा संबंधी सूचना पाई हेल्पलाइन नंबर 1444 को कॉल करंतु।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए
2: कोई डर नहीं,
1: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: कौन करिबी आरो कहि जो खाने मोर सिगे दे मुजा तो बहुत हेबे आ कोन हो
1: ए नवघन भाई जुहारे जुहारे
0: के आइलो
1: मु जेमा पापा
0: जुहारे
1: मु आसी कि परा बसी छी
0: हे जे को कहू छ
1: तमे तो बसी कि बुट्टो चबौ छ
0: बुट्टो
1: हां
0: तमे डेला होलिया कहू छ
1: आ के देला कि
0: के देला
1: मु परा इति थोई दे कि जाईथिली
0: हां
1: मागुनी डाकिला पळेली
0: गड़ जाइलो
1: सही पटु जाईथिली म
0: सही पटु

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: यह कार्यक्रम प्रायोजक थिले कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
4: शुणिले भारत सरकार कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान बाणी।
5: छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। इस बीच कुछ सदस्य अपनी सीटों से बाहर आ गए। हालांकि सभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से उनकी सीटों पर लौटने का कई बार आग्रह किया। हंगामे के बीच ही शून्यकाल के दौरान भाजपा के राघव चड्ढा ने डॉक्टरों को डायग्नोस्टिक केंद्रों द्वारा कथित तौर पर कमीशन राशि दिए जाने का मुद्दा उठाते हुए इस पर रोक लगाने और मरीजों के हितों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की। तेलुगु देशम पार्टी के मस्तान राव यादव बीडा ने सरकारी विभागों में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाते हुए कहा कि 27% आरक्षण का प्रावधान होने के बावजूद केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में इस वर्ग का प्रतिनिधित्व अपेक्षित स्तर तक पहुंच नहीं पाया है। भारतीय जनता पार्टी के सदानंद महालू शेठ तानवड़े ने कहा कि गोवा में वर्ष 2012 में खनन गतिविधियां बंद होने के बाद राज्य की अर्थव्यवस्था के साथ ही हजारों परिवारों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने केंद्र से खनन क्षेत्र को स्थायी और पारदर्शी तरीके से पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य गृहमंत्री के बयान की मांग करते हुए लगातार हंगामा करते रहे। सभापति ने उनसे अपने स्थानों पर लौट जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्ष के लगातार विरोध प्रदर्शन पर आपत्ति जताई। श्री रिजिजू ने यह भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हर दिन कुछ लिखकर लाते हैं और सदन में उसे पढ़ते हैं। इस पर कांग्रेस सदस्यों ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति देने की मांग की। जब सभापति ने श्री खड़गे को बोलने की अनुमति दी तो सत्ता पक्ष के सदस्य

ने इसका विरोध किया, जिसके बाद सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे दोबारा बैठक शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर फिर हंगामा शुरू कर दिया। इन सदस्यों ने नेता प्रतिपक्ष को बोलने की अनुमति देने की मांग की। सभापति ने कहा कि विपक्षी सदस्य शांत रहेंगे तो वो पूरक प्रश्नों के बाद नेता प्रतिपक्ष को अपनी बात रखने की अनुमति देंगे। सदस्यों के शांत होने के बाद सभापति ने नेता प्रतिपक्ष खड़गे से अपनी बात रखने को कहा। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई, जिससे सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। विपक्ष अपनी इस मांग पर अड़ा रहा कि गृहमंत्री अमित शाह सदन में आकर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर अपना वक्तव्य दें। श्री खड़गे ने संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू की टिप्पणी का उल्लेख करते हुए कहा कि सदन में अपनी बात रखना उनका अधिकार है। उन्होंने कहा कि कब बोलना है, क्या बोलना है, ये तय करना उनका अपना अधिकार है और इसके बारे में उन्हें अब क्या संसदीय कार्य मंत्री से पूछना होगा। नेता प्रतिपक्ष ने आसन से कहा कि गृहमंत्री को सदन में आने और स्पष्टीकरण देने के लिए कहा जाए। उन्होंने कहा कि हम चर्चा चाहते हैं। इस पर सभापति ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से गृहमंत्री को विपक्ष की भावनाओं से अवगत कराने को कहा। हंगामे के बीच सभापति ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन शोरगुल के कारण उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 2:15 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। दोपहर 2:15 पर बैठक पुनः शुरू होने पर सदन में विपक्षी सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को दोहराया। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसका विरोध किया। उपसभापति हरिवंश ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि एक महत्वपूर्ण विधेयक को पेश किया जाना है, इसलिए सदन में व्यवस्था बनाए रखें। लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण उन्होंने 1 मिनट के भीतर ही बैठक को दोपहर 2:45 तक के लिए स्थगित कर दिया। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2:45 पर राज्यसभा की बैठक शुरू होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक पर चर्चा के लिए सदन में पेश किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा के दौरान ही कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए सदन से बहिर्गमन किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा के दौरान सदस्यों ने अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं को उठाया। तृणमूल कांग्रेस के बाबुल सुप्रियो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन, बीजू जनता दल की सुलता देवी, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राव, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज कुमार झा, ऑल इंडिया अन्ना डीएम के सदस्य डॉ एम थंबी दुरई, तेलुगु देशम पार्टी के भाष्यम रामकृष्ण, भारतीय जनता पार्टी के डॉ सिकंदर कुमार, महेंद्र भट्ट, डॉ अनिल सुखदेव राव बोंडे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, डीएम डीके सदस्य एल के सुधीश और मनोनीत सदस्य सतनाम सिंह संधू ने भी हिस्सा लिया। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सरकार ये अनुदान की अनुपूरक मांगे 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष में अतिरिक्त खर्च के लिए लाई है। उन्होंने कहा कि सरकार इस अतिरिक्त बजट को लोक लेखा समिति की सिफारिश पर लाई है और पीएसी की अध्यक्षता विपक्ष के नेता के पास है। विधेयक का उद्देश्य भारत की संचित निधि से उन खर्चों के लिए धन निकालने की खातिर मंजूरी देना है जो व्यय 31 मार्च 2023 को खत्म हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ खास सेवाओं पर और उस साल के लिए मंजूर रकम से अधिक किए गए थे। वित्त मंत्री के जवाब के बाद सदन ने इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसके बाद सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोकहित के विभिन्न मुद्दे उठाए। विशेष उल्लेख के बाद पीठासीन अधिकारी घनश्याम तिवारी ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। सदन की बैठक कल 11 बजे होगी। और लीजिए अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं
पीटीआई

भाषा के अनवर अलूल हक। लोकसभा ने आज कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा न हो सकी। विधेयक का उद्देश्य विश्वसनीय नीतिगत व्यवस्था और प्रक्रियागत निश्चितता उपलब्ध कराकर अधिक से अधिक विदेशी पूंजी को आकर्षित करना तथा घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित कई विपक्षी दलों ने पिछले कई दिनों की तरह आज भी सदन में हंगामा जारी रखा, जिससे लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। मानसून सत्र की शुरुआत से ही सदन में एक भी दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके हैं। सदन की कार्यवाही सवेरे 11 बजे शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने की वर्षगांठ का उल्लेख किया और फिर सदस्यों ने कुछ देर मौन रखकर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद विपक्षी सदस्य सदन में हंगामा करने लगे। समाजवादी पार्टी के सदस्य जहां अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा प्रमुखता से उठा रहे थे, वहीं कांग्रेस सदस्य दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग को दोहराते हुए हंगामा करने लगे। श्री बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सदन को चलना चाहिए, सदन में चर्चा और संवाद होना चाहिए। अध्यक्ष ने कहा कि रोजाना नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना सदन की गरिमा को गिराता है, ये अच्छी परंपराएं नहीं है। उन्होंने कहा कि देश आपके आचरण को देख रहा है। शोर शराबा न थमने पर अध्यक्ष ने 11:03 पर बैठक अपराह्न 2 तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक 2 फिर शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्य आसन के सामने आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा तथा उसे पारित कराने के लिए सदन के पटल पर रख दिया। पीटासीन अध्यक्ष संध्या रॉय ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीट पर बैठने और कार्रवाई चलाने में सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि आपका ये व्यवहार उचित नहीं है, ये सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। हंगामा न थमने पर पीठासीन अध्यक्ष ने बैठक शुक्रवार सुबह 11 तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। विपक्ष के हंगामे के कारण कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा न हो सकी। सदन ने इस संबंध में जून में लागू अध्यादेश को अस्वीकृत करने के आरएसपी सदस्य एनके प्रेमचंद्रन के सांविधिक संकल्प को खारिज कर दिया। सदन ने के राधाकृष्णन, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और प्रेमचंद्रन सहित कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी खारिज कर दिया। इसके बाद ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया गया। इस विधेयक में फंड मैनेजरों के भारत आने को आसान बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, जबकि विदेशी निवेश को भारत में कारोबार में लगा पैसा नहीं माना जाएगा। ये विधेयक सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से होने वाले भुगतान पर शुल्क लगाने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार देता है। इस विधेयक का उद्देश्य वर्तमान कानूनी प्रावधान को हटाना है, जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तरीकों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR को लागू करने से रोकता है। RTGS और NEFT के जरिए होने वाले रियल टाइम भुगतान के लिए सेवा शुल्क देना पड़ता है। हालांकि UPI लेनदेन को ऐसे शुल्क से अभी छूट प्राप्त है। संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम में प्रस्तावित बदलाव कराधान से जुड़े एक बड़े कानून का हिस्सा है। कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं पर कम शुल्क लगाना है। साथ ही बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं तथा भुगतान अवसंरचना कंपनियों के लिए एक टिकाऊ राजस्व मॉडल सुनिश्चित करना।

0: रखना है जो डिजिटल भुगतान व्यवस्था को संचालित करती हैं। विधेयक के मसौदे में कहा गया है कि संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 10A बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पर शुल्क लगाने से रोकती है। वहीं आयकर अधिनियम की धारा 269SU के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाले बड़े व्यवसायों के लिए रुपे डेबिट कार्ड और भीम UPI QR कोड सहित कुछ निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भुगतान स्वीकार करना अनिवार्य है। वर्तमान में कोई भी बैंक या भुगतान प्रणाली प्रदाता आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269SU के निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए किसी पर भी सीधे या परोक्ष रूप से कोई शुल्क नहीं लगा सकता। इसके बाद अध्यक्ष और सदस्यों ने कुछ देर मौन रखकर परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। इन हमलों में तत्काल 1 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी, जबकि लाखों लोग गंभीर रूप से घायल और विकिरण के शिकार हुए थे। राष्ट्रीय स्तर पर स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन की निगरानी मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली शीर्ष समिति द्वारा की जाती थी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्रवाई की समीक्षा सुन रहे थे।
1: ଏତେବେଳେ ଯେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କଲୁ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା ଏଥର ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ କେତୋଟି ହିନ୍ଦୀ ଭକ୍ତିଗୀତ ଶୁଣିପାରିବେ ଏହି ଛୋଟ ବିଜ୍ଞାପନ ବିରତି ପରେ।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डर।

कार्यक्रम से श्री चंद्रशेखर पांडे रचनार घनश्याम हृदय के भक्ति गीतटी कंठदंशी एच आत्मा संगीत मुरली मनोहर स्वरूप।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स स्कैन के आज के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जया भारती
1: और मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। हम एक बार फिर मौजूद हैं खेल के मैदान की हर खबर के साथ, जिसमें हम आपको देंगे हर मैच का अपडेट, हर मैच का हाल और जया हर खिलाड़ी की खबर भी।
0: बिल्कुल, तो आज हमारे पास खेल के पिटारे में बहुत कुछ है, चाहे वो मैदान पर देश का मान बढ़ाने वाली हमारी राष्ट्रीय शान हॉकी की बात हो या फिर बैडमिंटन कोर्ट की रफ्तार। तो शुरू करते हैं आज के स्पोर्ट्स स्कैन का सफर और नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर।
1: तन्वी शर्मा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णामूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गार्गा की जोड़ी भी क्वार्टर फाइनल में पहुंची।
0: विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत की अमानत कंबोज ने डिस्कस थ्रो फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। वहीं आशीष यादव और टी धरणीधरन ने पुरुषों के जेवलिन थ्रो फाइनल में जगह पक्की की।
1: भारतीय हॉकी टीम चीन में होने वाले AFH जूनियर एशिया कप 2026 के लिए 18 सदस्यीय महिला टीम की घोषणा की गई है। उधर जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में उड़ीसा और मध्य प्रदेश ने फाइनल में जगह बनाई।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में छठी राष्ट्रीय सांसद बैडमिंटन चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। श्री रिजिजू ने बताया अगले खेलो इंडिया खेलों की मेजबानी तेलंगाना करेगा।
1: और अरुणाचल प्रदेश को एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी मिली।
0: तो शुरुआत करते हैं कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट से। जैसा कि हमने आज के कार्यक्रम के शुरुआत में ही बताया कि बैडमिंटन कोर्ट की रफ्तार पकड़ चुकी है हमारी टीम, तो कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में भारत की 17 साल की तन्वी शर्मा का शानदार प्रदर्शन जारी है। पिछले सप्ताह ताइपे ओपन सुपर 300 का खिताब जीतकर इतिहास रचने वाली तन्वी ने अब कोरिया मास्टर्स के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्री क्वार्टर फाइनल में तन्वी ने अपनी ही देश की श्रेयांशी वल्लीशेट्टी को हराया।
1: जी हाँ, और अश्मिता चारिहा और रक्षिता रामराज भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अब जो तीन भारतीय खिलाड़ी हैं वो क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी हैं। हालांकि प्रतियोगिता में अनमोल खरब का सफर समाप्त हो गया है। पूरे मैच का हाल जानने के लिए जया सुन लेते हैं स्पोर्ट्स डेस्क की ये खास रिपोर्ट।
2: अनमोल खरब को प्री क्वार्टर फाइनल में वियतनाम के ओलंपियन वू थी ट्रांग के खिलाफ हुए कड़े मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। अनमोल ने इस मैच को 23-21, 15-21, 21-18 से गंवाया। इस हार के साथ ही प्रतियोगिता में उनका सफर समाप्त हो गया। हालांकि शुरुआती गेम में अनमोल ज्यादातर समय नियंत्रण में थी, लेकिन उन्होंने 4 गेम पॉइंट गंवा दिए, जिससे वू थी ट्रांग को शुरुआती बढ़त लेने का मौका मिल गया। इसके बाद अनमोल ने दूसरे गेम में जोरदार वापसी की। हालांकि निर्णायक गेम में वो वापसी नहीं कर सकी और वू थी ट्रांग ने मुकाबला जीत लिया। उधर दूसरे क्वार्टर फाइनल में तन्वी शर्मा ने श्रेयांशी वल्लीशेट्टी को हराकर अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। शुरुआती गेम में पीछे चल रही तन्वी ने जोरदार

0: वापसी की और कई पॉइंट्स लेकर पहला गेम अपने नाम किया। श्रेयांशी बलिशेट्टी ने दूसरे गेम में वापसी की, हालांकि निर्णायक गेम में तन्वी ने शुरू से ही नियंत्रण बनाए रखा और 21-16, 17-21, 21-13 से मैच जीत लिया। इसके अलावा अश्मिता ने मेजबान कोरिया की किम मिन जी को जबकि जापान की मनामी सुइजू को पराजित किया। महिला डबल्स में आज भारत की रितिका ठाकर और सोनाली सिंह का सफर समाप्त हो गया। प्री क्वार्टर फाइनल में उन्हें नकारडे और ताकाहाशी की जापानी जोड़ी से हार का सामना करना पड़ा। पुरुष डबल्स में प्री क्वार्टर फाइनल में पृथ्वी कृष्णा मूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गारागा की जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की जोड़ी को पराजित किया। ऐसे में अब सबकी नजरें कल होने वाले महिला सिंगल्स और पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल पर होंगी। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: जी हाँ, ये रिपोर्ट हमने सुनी। और अगर जया हम एक नज़र डालें तन्वी शर्मा के करियर पर, तो 2026 में ताइपे ओपन सुपर 300 का खिताब उन्होंने जीता था। इसके अलावा 2025 में डेनमार्क चैलेंज की वो विजेता रही हैं, 2025 में ओडिशा मास्टर्स सुपर 100 में उप विजेता थीं, 2025 में ही गुवाहाटी मास्टर्स सुपर 100 में वो उप विजेता थीं, 2024 में बॉन इंटरनेशनल का खिताब जीता, 2024 में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय टीम का वो हिस्सा रही हैं। इसके अलावा जूनियर विश्व चैंपियनशिप में वो सिल्वर मेडल भी जीती थी। तो तन्वी शर्मा, जो कि अभी 17 साल की उम्र में उन्होंने जिस तरह का शानदार प्रदर्शन किया है पूरे मैच में, वो काबिले तारीफ है जया।
2: बिल्कुल, और जिस तरह से वो कोर्ट में अपनी गजब की फुर्ती, तेज मूवमेंट हो या फिर जो आक्रामक स्मैश होता है, उनके लिए ही वो जानी जाती है। और जब कल उनका रक्षिता रामराज से ही होगा, जो कि हमारे ही देश की हैं, तो समय देखने वाला होगा, क्योंकि रक्षिता भी काफी कड़े टक्कर दे चुकी हैं। अगर हम बेहद दबाव वाले क्षणों की बात करें, तो उसमें भी रक्षिता ने बहुत नियंत्रण के साथ, बहुत शांति के साथ अपनी प्रतियोगिता को कंप्लीट किया है। तो देखते हैं कि कल की नजरें महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में तन्वी शर्मा और रक्षिता रामराज के बीच होगी। और अगर हम दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले की बात करें, तो अश्मिता चाहिला का सामना जापान की हीना अकेची से होने वाला है।
1: बिल्कुल, और अगर पुरुष डबल्स की अगर हम बात करें, इसके क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पृथ्वी कृष्णामूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गारगा जो है, ये जोड़ी मलेशियाई जोड़ी से कल अपना दमखम दिखाएगी। इससे पहले आज प्री क्वार्टर फाइनल का मैच भी इन्होंने शानदार तरीके से जीता और अब इन्होंने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की करी है। तो हम सब की नजर अब कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर लगी होगी।
2: बिल्कुल, देखते हैं कल का मैच कैसा होता है।
1: भारत की अमानत कंबोज ने आज इस सीजन का अपने सबसे अच्छा थ्रो करते हुए अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं के डिस्कस थ्रो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अमानत जेवलिन थ्रो फाइनल में जगह बनाने वाली तीसरी भारतीय हैं। उनसे पहले आशीष यादव और टी थरणी धरन पुरुषों के जेवलिन थ्रो फाइनल में जगह बना चुके हैं। तो जया, जिस तरह का प्रदर्शन किया है इंडियन एथलीट्स ने, वो बहुत गजब की बात है।
2: तो सुनते हैं इस जानकारी के लिए और अधिक जानकारी के हमारे एक विशेष डेस्क से एक विशेष रिपोर्ट।
3: मई 2026 में 52.24 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ एशियन अंडर 20 का गोल्ड मेडल जीतने वाली अमानत ने क्वालिफिकेशन राउंड में 52.58 मीटर का थ्रो किया, जिसके साथ अमानत दुनिया की बेहतरीन अंडर 20 थ्रोअर्स में छठे स्थान पर रही। महिलाओं का डिस्कस थ्रो फाइनल शनिवार को होगा। इससे पहले आशीष ने 69.87 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान पर रहे, जबकि धरणी धरन ने 68.07 मीटर का थ्रो करते हुए अपने ग्रुप से फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। पुरुषों के 800 मीटर दौड़ में मोगली वेंकटराम ने अपने हिट में तीसरा स्थान हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले टीम ने सीजन का अपना सबसे अच्छा समय निकाला, लेकिन टॉप 9 में शामिल ना हो पाने के कारण फाइनल में जगह नहीं बना सकी। ओरेगन के हेवर्ड फील्ड में 5-9 अगस्त के बीच आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में भारत की 36 सदस्य ट्रैक और फील्ड टीम हिस्सा ले रही है। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
1: जी हाँ जया, अमानत ने आज जिस तरह का प्रदर्शन किया, वो पंजाब से आती हैं और 2026 में उन्होंने एशियन U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 52.24 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था और भारत की पहली एशियाई जूनियर चैंपियन बनी। इसके अलावा उन्होंने अगस्त 2026 में वर्ल्ड एथलेटिक्स

0: ट्वेंटी चैंपियनशिप के फाइनल में भी अपना स्थान पक्का किया था, तो इसलिए सबकी जो नजरें हैं वो अमानत पर लगी हुई हैं।
1: बिल्कुल, अमानत एक बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड वाली खिलाड़ी हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए जो हम बाकी की बात कर रहे हैं, आशीष यादव की भी बात कर रहे थे, टी धरणीधरन की भी बात कर रहे हैं जो जेवलिन थ्रो के फाइनल में जगह बना चुके हैं, बेहतरीन खिलाड़ी हैं और हमारे देश के खिलाड़ी हैं, तो हमारा पूरा समर्थन है इनको। लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि साउथ अफ्रीका के जो अंडर 20 जेवलिन चैंपियन जॉन हेनरी हेमेंस हैं, उन्होंने यूजीन में शानदार शुरुआत करते हुए अपने पहले ही थ्रो में 76.02 मीटर के साथ एक क्वालिफाइंग मार्क किया और हेमेंस के पीछे जो तीन एथलीट्स थे उन्होंने 69 मीटर से ज्यादा का थ्रो किया, जिसमें हमारे भारत के आशीष, पोलैंड के अलेक्जेंडर वेजना और चीन के यांग झाओई हैं। तो ऐसे में फाइनल में कड़े मुकाबले की उम्मीद है।
0: बिल्कुल, अब हमें इंतजार रहेगा कि फाइनल मुकाबले में भारतीय खिलाड़ी किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं। और नजर डालते हैं हॉकी पर। जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में आज उड़ीसा और मध्य प्रदेश ने फाइनल में जगह बना ली है। कोयंबटूर में खेले गए सेमीफाइनल में उड़ीसा ने पंजाब को 6-4 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। उड़ीसा की ओर से बिल्कन ओराव ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए हैट्रिक लगाई। उन्होंने 28वें, 41वें और 52वें मिनट में गोल कर टीम को शानदार जीत दिलाई। वहीं आलोक कुमार ने 11वें और कप्तान दीपक प्रधान ने 37वें मिनट में गोल किया और इसके बाद अमित कीरो ने 59वें मिनट में गोल कर टीम को फाइनल में पहुंचाया। तो जया, ये जो पहला सेमीफाइनल मैच था इसमें जिस तरीके से बिल्कन ओराव ने जो हैट्रिक लगाई है वो इस जीत में एक अहम भूमिका
1: निभाता है और एक काबिले तारीफ है। अगर हम दूसरे सेमीफाइनल की बात करें तो मध्य प्रदेश ने झारखंड को 2-0 से हराया। मध्य प्रदेश की ओर से राजवीर सिंह ने 56वें मिनट में गोल किया और इसके दो ही मिनट बाद आशीर आदिल खान ने गोल कर टीम को खिताबी मुकाबले में पहुंचाया। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड को हॉकी का नर्सरी कहा जाता है, लेकिन फिर भी जिस तरह से झारखंड को करारी हार मिली है तो इस तरह से देख रहे हैं कि जो छोटे छोटे टूर्नामेंट है ना वो लगभग पूरे देश को, जो हमारी राष्ट्रीय शान कहते हैं हॉकी, उसमें एक अच्छी पकड़ दे रही है हमारे देश के जूनियर खिलाड़ियों को भी। बता दें कि फाइनल मुकाबला 8 अगस्त को कोयंबटूर में खेला जाएगा और पंजाब और झारखंड प्रतियोगिता में तीसरे स्थान के लिए खेलेंगे। और जब हमने हॉकी की बात की है तो हम ये भी बता दें कि जो भारतीय हॉकी है उन्होंने यानी कि इंडियन हॉकी ने 30 अगस्त से 13 सितंबर तक चीन में होने वाले AHF जूनियर एशिया कप 2026 के लिए 18 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। टीम में दो खिलाड़ियों को विकल्प के तौर पर रखा गया है। मिडफील्डर खैदम शेलेमा चानू टीम की कप्तानी करेंगी।
0: जी हाँ, और मुख्य कोच टीम व्हाइट के निर्देशन में टीम इस टूर्नामेंट की तैयारियों में फिलहाल जुट गई है। टूर्नामेंट की तैयारी के लिए भारतीय टीम हाल ही में ब्रिटेन के दौरे से लौटी है। एशिया कप में मैचों का कार्यक्रम और पूल की जानकारी टूर्नामेंट शुरू होने के आसपास हमें मिलेगी और फिलहाल यहां पर पूरी टीम की जो घोषणा की गई है और काफी जया बैलेंस टीम है हमारे बीच में।
1: जी, अब हम बात करते हैं जो नई दिल्ली में 6वीं राष्ट्रीय सांसद बैडमिंटन चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसका उद्घाटन किया। यह प्रतियोगिता 4 दिन तक चलेगी और रविवार तक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ओबी जनरल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित की जाएगी। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब द्वारा आयोजित यह प्रतियोगिता सरकार को खेलो इंडिया और फिट इंडिया अभियान को भी आगे बढ़ाती है।
2: हर पार्टी के MPs और अलग अलग एज के सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और जो हम लोग फिट इंडिया खेलो इंडिया जो प्रोग्राम चलाते हैं तो MPs लोग इस तरीके से पार्टिसिपेट करके तो ये देश के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए बहुत अच्छी बात है। और मैंने देखा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया है इसमें बहुत सिंपल बट बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज करके सारा व्यवस्था कर रहे हैं। स्पिरिट ऑफ फ्रेंडशिप यूनिटी राजनीति में बहुत जरूरी है। ये मैं अभी राजीव प्रताप रूडी जी टीम को मैं बधाई देता हूँ।
1: और श्री रिजिजू ने यह भी बताया है कि खेलो इंडिया की मेजबानी, जो अगले खेलो इंडिया की मेजबानी है वो तेलंगाना करेगा। तो जिस तरह से खेलो इंडिया पर सरकार हमेशा ध्यान दे रही है सिद्धार्थ, अगर हम कहें तो इसी का नतीजा है कि अभी अरुणाचल प्रदेश को भी एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है।
0: बिल्कुल, तो ये अब जो हमारी नजर है वो अरुणाचल प्रदेश की एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप की जो मेजबानी है इसके ऊपर रहेगी, जिसे राज्य के साहसिक खेलों और वैश्विक पर्यटन की पहचान को बढ़ावा देने की दिशा में एक

0: कदम माना जा रहा है। चैंपियनशिप का आयोजन सियांग जिले के बोलिंग में होगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू और पंचायती राज तथा ग्रामीण विकास मंत्री ओजिंग तासिंग ने आगामी प्रतियोगिता की तैयारियों की समीक्षा के लिए खेल प्रशासन से जुड़े प्रमुख अधिकारियों के साथ साथ अलग अलग उच्च स्तरीय बैठकें की। यह प्रतियोगिता 5 से 9 अक्टूबर के बीच में आयोजित की जाएगी। और यहां पर यह बता दें तुम्हें जया कि जो सियांग नदी जो है ये ऊपरी ब्रह्मपुत्र में राफ्टिंग के लिए भारत के सबसे रोमांचक और चुनौतीपूर्ण एडवेंचर स्पोर्ट्स में से एक है। अरुणाचल प्रदेश की शक्तिशाली नदी अपने ग्रेड 3 से ग्रेड 5 स्तर के जो रैपिड्स हैं या जो उसके लिए ये बेहद मशहूर है। तो ऐसे में 5 दिन तक चलने वाली इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में एशिया के शीर्ष राफ्टिंग खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।
1: बिल्कुल, और जिस तरह से आपने इस नदी की तारीफ की तो अपने श्रोताओं को बता दें कि प्रतियोगिता इसी नदी पर आयोजित होगी। यह सियांग नदी की सहायक नदी और बोलिंग की सियांग घाटी से होकर बहती है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैंट में इसी समय फिर आपसे मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए जया और सिद्धार्थ को।
0: नमस्कार, नमस्कार।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना को मंजूरी दी। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति। लोकसभा ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर राहत उपायों से संबंधित विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मध्यम दूरी की अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण। केंद्र ने विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने के दावों को खारिज किया। झारखंड और केरलम में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ। और तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना है।
2: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
1: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चारियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि परियोजना से यात्रा समय घटकर आधा हो जाएगा।
2: आज का दूसरा बड़ा फैसला है, असम में एक हाईवे पे बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, ये है बाहता चेरियाली, यानी गुवाहाटी से जस्ट बाहर निकलने के बाद में वहां से लेके तेजपुर तक। ये 4 लेन हाईवे 135 किलोमीटर का है और करीब 8,970 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। आगे जाके ब्रह्मपुत्र टनल को भी ये जोड़ेगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

0: सभा है कि गोवर्धन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी, स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री मोदी ने कहा कि ये योजना कंप्रेस्ड बायोगैस को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से निवेश और नवाचार के लिए एक मजबूत और स्थिर इकोसिस्टम तैयार होगा। किसानों, सहकारी समितियों, लघु और मध्यम उद्यमों, महिला उद्यमियों तथा ग्रामीण उद्यमों को इसका लाभ मिलेगा। लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। जम्मू कश्मीर के संबंध में सदस्यों की चिंताओं पर वित्त मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया कि 2019 में अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक सहायता प्रदान की है।
1: आर्टिकल 370 गेटिंग अब्रोगेटेड।
2: अनुच्छेद 370 का निरसन इस बात को सिद्ध करता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जिसमें वे क्षेत्र भी शामिल हैं जिन पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। इसलिए हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को पूरा सहयोग और संरक्षण मिले, क्योंकि हम सभी एक ही देश का हिस्सा है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों में कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही में कई बार व्यवधान आया।
3: लोकसभा की कार्यवाही 2 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 3 बार स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के कारण लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सका, जबकि राज्यसभा में इन्हें कुछ समय के लिए ही संचालित किया जा सका। हंगामे के बीच लोकसभा ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया। इस विधेयक में संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 तथा वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन का प्रावधान है। उधर राज्यसभा ने चर्चा के बाद विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 को पारित कर लोकसभा को लौटा दिया। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान मांग की थी। यह राशि मुख्य रूप से ऋण के पुनर्भुगतान पर खर्च की जाएगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने आज फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत इसराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई निरंतर प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से आज मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये सफल परीक्षण देश की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि सरकार विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पूरी तरह से अलग हैं और इन्हें एक नहीं समझना चाहिए। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ 50 लाख से अधिक परिवारों को मिल चुका है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही।
4: 19 लाख हाउसहोल्ड्स आर रिसीविंग जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल।
5: 19 लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। 12 लाख से अधिक परिवारों ने अतिरिक्त बिजली बेचकर 421 करोड़ रुपए की आय अर्जित की है। सौर ऊर्जा संयंत्रों को लगाने से महज 9 महीनों में लगभग 3.25 गुना की वृद्धि हुई है।
4: मोर देन 3.2 टाइम्स इन जस्ट 9 मंथ्स।
0: ब्रिक्स उद्योग और व्यापार मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक आज जयपुर में शुरू हुई। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वैश्विक व्यापार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल से

0: सेवाओं और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो रही है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस बैठक में शामिल हो रहे हैं।
1: ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसमें 9 देश मिलकर दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं, जो हम सब अपने अपने देशों के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से अच्छी नीतियों के साथ विश्व भर में प्रगति हो सके उसकी चिंता करते हैं।
0: 2 दिन का ब्रिक्स वेब्स बाजार आज मुंबई में शुरू हुआ। ये रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 21 ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदारों के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री चंचल कुमार ने आज कहा कि ब्रिक्स वेव बाजार का उद्देश्य वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए एक ऐसा मंच बनाना है जहां परियोजनाओं, भागीदारी तथा को प्रोडक्शन के नए मार्ग उजागर हों। इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, एआई मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार ने कहा कि ब्रिक्स वेव बाजार वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी के भविष्य को आकार देने के लिए प्रभावी साबित होगा। विशारानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। झारखंड और केरलम में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में मॉनसून सत्र के पहले दिन जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में झारखंड विधानसभा में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं।
3: छात्रों का आंदोलन अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। सरकार की ओर से गतिरोध समाप्त करने की गंभीर कवायद शुरू की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर 4 मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इसके जवाब में छात्रों की तरफ से वार्ता के लिए 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की घोषणा की गई है, जो सीधे सरकार के मंत्रियों के समक्ष अपनी बातें रखेंगे। इस मुद्दे पर विपक्ष ने आज झारखंड विधानसभा के भीतर और बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए के विधायकों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: उधर केरलम के तिरुवनंतपुरम में भाजपा युवा मोर्चा ने सचिवालय तक एक विशाल विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची में शामिल होने के बावजूद पिछले 2 वर्ष से नियुक्ति पत्र न पाने वाले उम्मीदवारों के लिए न्याय की मांग की। बम्बे उच्च न्यायालय की गोवा बेंच ने आज तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपने कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में 10 साल की कड़ी सजा सुनाई। न्यायालय ने तेजपाल पर 10 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया, जो पीड़िता को दिया जाएगा। सरकार ने आज बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से 10 नाविकों सहित 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 75 भारतीय घायल हुए हैं। राज्यसभा में लिखित जवाब में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने मेजबान सरकारों के समन्वय से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को उनके पार्थिव शरीर को शीघ्र वापस लाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि अभियान ने 5 सफल वर्ष पूरे कर लिए हैं और ये एक जन आंदोलन में बदल गया है। ये राष्ट्रीय एकता और गौरव की भावना को दर्शाता है। हर घर तिरंगा अभियान इस महीने की 9 से 17 तारीख तक चलाया जाएगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 374 अंक बढ़कर 78,955 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 11 अंक की मामूली बढ़त लेकर 24,636 दर्ज हुआ। और अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 10 पैसे कमजोर होकर 95.22 रुपए पर बंद हुआ।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई से मानवाधिकारों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। पिछले एक दशक में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने जबरन गायब किए जाने, अत्यधिक बल प्रयोग, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक और कब्जे वाले क्षेत्र में जवाबदेही की कमी पर बार बार चिंता व्यक्त की है। 27 जुलाई को पीओजेके में तथाकथित विधायी चुनावों के पहले दिन रावलकोट में हिंसा

0: झड़प हुई। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णामूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। प्री क्वार्टर फाइनल में तन्वी ने श्रेयांशी बलिशेट्टी को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना को मंजूरी दी। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति। लोकसभा ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर राहत उपायों से संबंधित विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मध्यम दूरी की अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण। केंद्र ने विमानन टर्बाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने के दावों को खारिज किया। झारखंड और केरल में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ और तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves Gobardhan scheme to boost clean energy and rural economy. Also gives nod to 4-lane highway project between Guwahati and Tezpur to enhance connectivity in Assam. Lok Sabha clears legislation providing tax relief measures to support economy and boost foreign investment. Prime Minister Narendra Modi and his Israeli counterpart Benjamin Netanyahu reaffirm commitment to deepen bilateral ties. India successfully test fires medium-range Agni-4 ballistic missile in Odisha. Centre rejects claims of ethanol blending in aviation turbine fuel. Student protests over recruitment exam issues intensify in Jharkhand and Kerala. And in badminton, Tanvi Sharma, Ashmita Chaliha and Rakshita Ramraj enter women's singles quarterfinals at Korea Masters. And now the news in detail. The Union Cabinet today approved Gobardhan, the National Circular Bioenergy Scheme, with a total outlay of 23,731 crore rupees to boost clean energy and rural economy. Briefing media in New Delhi this afternoon, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the scheme will be implemented from 2026-27 to 2035-36 and establish compressed biogas as a major pillar of India's future energy mix.
2: भारत की जो नेचुरल गैस का कंजम्पशन है
3: इंडिया करंटली इंपोर्ट्स नियरली 50% ऑफ इट्स नेचुरल गैस रिक्वायरमेंट्स एंड द गवर्नमेंट इज टेकिंग कंटिन्यूअस स्टेप्स टू रिड्यूस दिस डिपेंडेंस अंडर द स्कीम द प्रोडक्शन ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस इज टारगेटेड टू इंक्रीज टेनफोल्ड ओवर द नेक्स्ट डेकेड फ्रॉम एन एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव द इनिशिएटिव इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बाय अप्रोक्सीमेटली 40 मिलियन टन्स इकोनॉमिकली इट इज प्रोजेक्टेड टू कंट्रीब्यूट अराउंड 75,000 crore rupees टू the national GDP and generate nearly 1.5 lakh employment opportunities across the country.
2: About 1.5 lakh jobs will be created by this program.
1: Mr. Vaishnaw said the Cabinet Committee on Economic Affairs has also approved the construction of 4-lane highway from Guwahati to Tezpur along the National Highway 15 in Assam.
3: Today's second major decision is related to an important highway project in Assam. It is the Baihata-Chariali-Tezpur 4-lane highway, stretching from Baihata-Chariali, located just outside Guwahati, to Tezpur. The highway will be 135 kilometers long with an investment of approximately 8,970 crore rupees. It will also be connected to the Brahmaputra tunnel in the future.
1: On Cabinet's approval of Gobardhan scheme, Prime Minister Narendra Modi in a social media post said the decision is a vital step towards clean energy, rural prosperity and realizing the country's collective dream of becoming a self-reliant nation. Further, the Prime Minister highlighted the Guwahati-Tezpur corridor project in Assam will reduce travel time, improve road safety and ease congestion through major bypasses at various locations.

0: Countrywide.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए बाढ़ प्रबंधन और मॉनसून की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार के प्रभावी उपायों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में प्रोफेसर सूर्य प्रकाश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
2: नमस्कार, कंट्री वाइड कार्यक्रम लेकर मैं मनोज पाठक हाजिर हूँ। मॉनसून की शुरुआत हो चुकी है। देश भर में कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है और कुछ स्थानों पर तो इतनी बारिश हुई और स्थितियां विकट हो चली हैं। ऐसे में बाढ़ और मॉनसून की चुनौतियां, कैसे हम अपने नुकसान को न्यूनतम करें और कठिन आपदा से किस तरह उबरें, इसी विषय पर आज हम इस अंक में मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। अपनी चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है आज राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के जाने माने इस क्षेत्र के आपदा विशेषज्ञ प्रोफेसर सूर्य प्रकाश जी को। प्रोफेसर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि मॉनसून की प्रवृत्तियों में हम एक बदलाव पिछले कुछ समय से देख रहे हैं। कहीं बाढ़ तो कहीं सुखार पहले भी आती थी, लेकिन अब की बाढ़ और अब की सुखार दोनों ही स्थितियां चिंताजनक हो जाती हैं। खासतौर से अभी जो देश के कई प्रदेशों में कई स्थानों पर जो बारिश की बौछारें हुई हैं, उनसे बाढ़ की आपदा आ गई है, उनसे निपटने के लिए हमारी क्या सब तैयारियां हैं, पहले तो हम यही समझना चाहेंगे, और कैसे हम अपने नुकसान को कम कर सकते हैं ऐसी परिस्थितियों में। इस पर चर्चा की शुरुआत यहीं से करना चाहेंगे हम।
3: इस विषय में आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि हर साल मानसून में बारिश काफी ज्यादा मात्रा में जब होती है तो कई आपदाएं घटित होती हैं, और इसके लिए हम पहले से पूर्व तैयारी करते हैं। जून के महीने में सभी स्टेट्स जो हमारे हैं उनके रिलीफ कमिश्नर्स की केंद्रीय सरकार द्वारा एक मीटिंग गठित की जाती है, और उसमें ये सब चर्चा की जाती है कि आने वाले मौसम के क्या पूर्व अनुमान है और उसकी वजह से किस किस तरह की आपदाएं घटित हो सकती हैं, जिसके लिए हमें तैयार रहना है और निपटना या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो पहली तो तैयारी हमारी यही होती है कि मौसम विभाग हमें पूरे मानसून सीजन का जो भी सूचना देता है कि आने वाला इस बार का मानसून कैसा रहेगा, उसको ध्यान में रखते हुए पूर्व तैयारियां की जाती हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी आपदाएं संभावित हैं और उसके लिए किस तरह की तैयारियों की जरूरत है। एक तो ये विभाग संबंधित तैयारियां हो जाती हैं जो हमारा आपदा प्रबंधन विभाग देखता है। दूसरी तरफ जनता की तैयारी भी, जन समुदाय की तैयारी भी बहुत जरूरी है। तो जनता को भी ये संदेश दिया जाता है कि समय समय पर कैसा मौसम होने वाला है, उसका क्या पूर्वानुमान है। जो हमारा भारत मौसम विभाग है वो हर हफ्ते अपनी मौसम की पूर्वानुमान की जो भी चेतावनियां होती हैं वो जिला प्रशासन और पब्लिक के साथ भी अपनी वेबसाइट के जरिए शेयर करता है। उन्होंने कुछ अपनी मोबाइल एप्स भी बनाई हैं, जैसे मौसम है, मेघदूत है, दामिनी है, जिनके जरिए भी ये सूचनाएं आपके मोबाइल तक पहुंचती हैं, जिसके जरिए आप ये जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो पहला तो ये है कि विभागों को तैयार करना और उचित संसाधन उपलब्ध कराना और सबकी जो है जिम्मेदारी तय करना कि कौन क्या करेगा। और इसके साथ ही हमारा जो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर होता है उसको भी तैयार रखा जाता है 24/7 365 डेज, कि कोई भी ऐसी आपदा की सूचना मिलने पर तुरंत कार्यवाही की जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा जीवन रक्षा की जा सके। तो इसमें सब तरह के उपाय किए जाते हैं, ना सिर्फ ह्यूमन लाइफ के लिए, इवन लाइफ स्टॉक भी जो रिस्क पे होता है उसको और वाइल्ड लाइफ को भी बचाने की कोशिशें की जाती हैं।
2: यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे प्रोफेसर साहब कि हाल के दिनों में अपेक्षाकृत अन्य विकसित देशों से यदि हम तुलना करें अपने यहाँ, तो आपदा प्रबंधन

0: लाखों लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेज गति से सुरक्षित बचा लिया जाता है, जबकि हमारे यहाँ कहाँ कमियां रह जाती हैं जहां पर कि हमें अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है?
1: देखिए, जहाँ तक मौसम के पूर्वानुमान का सवाल है, उसमें काफी तकनीकी तौर पर तरक्की की गई है। बहुत सारे डॉपलर वेदर रडार जो स्थानीय मौसम की सूचना हमें अच्छे तौर पर दे सकते हैं, जिस पे रिलाई किया जा सकता है, का उपयोग किया जा रहा है। परंतु उसके बावजूद भी जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र है, जहाँ पर ज्यादातर क्लाउड बर्स्ट, लाइटनिंग, भूस्खलन या बाढ़, त्वरित बाढ़ जैसी आपदाएं होती हैं, वहां पर ये काफी मुश्किल होता है जानकारियां सही तरीके से हासिल करना। हालांकि हम कई मल्टी मॉडल्स को यूज करते हैं, उसके बावजूद भी सही सूचना कई बार सही समय पर नहीं मिल पाती है। तो इसमें सबसे बड़ा ये होता है कि पहले तो अगर सूचना है तो जैसा आपने बता, रिक्तिकरण करते हैं हम कि जो भी आपदाग्रस्त क्षेत्र है वहां से जो लोग उसमें फंस सकते हैं उनको पहले निकाल लिया जाता है। परंतु उस सब के बावजूद भी कई आपदाएं ऐसी होती हैं जिसमें लोग फंस जाते हैं और उसमें कैजुअलिटीज भी हो जाती हैं। तो उस समय में हमारे पास एक गोल्डन आवर्स या पीरियड का टाइम होता है जिस समय हम सबसे ज्यादा जानें बचाई जा सकती हैं। भूस्खलन हो, बाढ़ हो, इसमें बहुत कम समय हमें गोल्डन आवर्स के टर्म में मिलता है जब ज्यादा से ज्यादा जानें बचाई जा सकती हैं। इसका दूसरा बड़ा कारण ये भी है कि ये आपदाएं ऐसे क्षेत्रों में होती हैं जो दुर्गम गामी होते हैं, जहां पर पहुंचना बहुत है। वहां का ग्रेडियंट स्टीप होता है, वहां का एल्टीट्यूड हाई होता है और वहां पर जो आने जाने की व्यवस्थाएं हैं वो भी सीमित होती हैं। तो इस वजह से कई बार हम लोगों को एयर ऑपरेशंस भी करने पड़ते हैं रेस्क्यू में, इवैक्यूएशन में, और कई बार हम लोग जो है स्थानीय टीम है जो हमारी स्टेट लेवल की भी आपदा मोचन बल होती है, जैसे राष्ट्रीय आपदा मोचन बल है, एनडीआरएफ की टीम है, ऐसे एसडीआरएफ भी गठित की गई है और डिस्ट्रिक्ट को भी कहा गया है कि आप अपनी भी क्विक रिस्पॉन्स टीम्स बनाइए। अब ऐसे में बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो हम पानी का अनुमान तो लगा रहे हैं परंतु उसके साथ जो मलबा आता है उसका अंदाज नहीं लगा पाते हैं, और मलबा कटाव बहुत करता है, और पानी के साथ जब मलबा आता है तो उसकी कटाव की जो बल शक्ति है वो कई गुना हो जाती है। तो आपने देखा होगा अक्सर कई जगह हमारे पुल के पुल बह जाते हैं, सड़कें बह जाती हैं, मकान बह जाते हैं। तो ये सब होता है और इसके लिए बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा कि हम लोगों को पहले से सूचित करें और उनको सुरक्षित स्थलों पर सुरक्षित मार्गों के जरिए ले के जाएं, तो ये सब तैयारियां पहले से करनी होती हैं। और इसमें सबसे बड़ी सहभागिता और साझेदारी हमारे जन समुदाय की है। जब तक कि हम जन चेतना नहीं लाते और लोगों को जागृत नहीं करते कि आप आपदाग्रस्त क्षेत्र में अगर रह रहे हैं और काफी मात्रा में बारिश होने की संभावनाएं हैं, तो उस समय आप सचेत रहें, जागृत रहें और तैयार रहें, ताकि रात में होता क्या है कि जब बारिश होती है तो अंधेरा हो जाता है, लाइट भी चली जाती है, रास्ते नजर नहीं आते हैं। तो उसके लिए हम मॉक ड्रिल्स और प्रैक्टिसेस की भी बात करते हैं। एक और चीज जो इस पे मैं संज्ञान में लाना चाहूंगा कि अब ये सावन का महीना जैसे चल रहा है तो हमारे कांवड़ यात्रा भी चल रही है जिसकी तरफ हमारा कई बार ध्यान नहीं जाता, और वो भी काफी ज्यादा मात्रा में लोग जाने लगे हैं और बड़े बड़े दुर्गामी स्थलों पर जाते हैं। उनको भी बड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि जब लोग काफी भीड़ भाड़ में होते हैं या जैसे लाइटनिंग के इवेंट्स हो जाते हैं और वो मेटल के कलश लेके जाते हैं और पानी लेकर जाते हैं जो कंडक्टर्स के काम करते हैं, तो ऐसे में दुर्घटनाओं की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। तो एक तो हमारा जो पिलग्रिमेज सीजन है जो मई में शुरू होता है, नॉर्मली अक्टूबर में एंड होता है, और बीच में बड़ा सीजन हमारा जो है मानसून के समय में रहता है, तो ट्रैकिंग भी लोग जाते हैं, पिलग्रिमेज के लिए भी जाते हैं और टूरिज्म के लिए भी जाते हैं। तो इन सब की वजह से वहां पर ज्यादा संख्या एकत्रित हो जाती है, ज्यादा वाहन इकट्ठे हो जाते हैं और ज्यादा दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं।
0: यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे प्रोफेसर साहब कि बिजली गिरने से मरने की घटनाएं पूरे देश में बढ़ रही हैं अपेक्षाकृत पहले की तुलना में, इससे बचने का क्या, आपने कहा कि कड़े वगैरह आकर्षित करने में होते हैं, ऐसे और कौन से उपाय हो सकते हैं? एक तो बाढ़ की स्थिति में बड़े पैमाने पर यदि पानी आ गया है नदियों के माध्यम से बारिश के कारण से तो जल जमाव होगा, उससे नुकसान अपनी जगह, लेकिन बिजली चमकने, बिजली गिरने से जो आपदाएं हो रही हैं उनसे कैसे निपट सकते हैं?
1: कभी भी जब लाइटनिंग होते हैं उससे पहले थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, क्लाउड बस्ट इवेंट्स होते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप कहाँ पर हैं। पहले तो आप घर के अंदर हैं या बाहर हैं, आप ओपन एरिया में हैं जहां से लाइटनिंग स्ट्राइक हो सकता है, तो और आउटडोर्स में हैं तो आपको नो डाउट एक क्लोज एरिया में चला जाना चाहिए, डर्टी हाउसेस में जाना चाहिए, और वहां पे अपने बचाव के लिए कोशिश करना। एक जो

0: मिथ है लोगों को कि पेड़ तले चले जाएंगे तो लाइटनिंग का इम्पैक्ट नहीं हुआ, ये उल्टा है। आप अकलौते बड़े पेड़ तले चले जाते हैं तो लाइटनिंग का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे ही कई लोग छाता लेके चल जाते हैं मेटल पेड़ के साथ, तो वो और हाइट बढ़ जाता है और मेटालिक एलिमेंट के साथ में और बिजली लगने की घटनाएं ज्यादा हो जाती हैं। और इसके साथ ही अगर आपको, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि हमें करना क्या है, कई लोग लेट जाते हैं जमीन पे, वो भी गलत है। तो उस समय में उकड़ू बैठ के दोनों हील्स इकट्ठे करके और नी में अपना हेड डालते हुए
1: जी
0: वो बैठ जरूरी होता है ताकि बिजली का प्रभाव कम से कम किया जा सके। अगर आपके पास में कोई ऐसा स्थल निकटतम जगह पर जहां पे कवर्ड एरिया है तो आपको उसमें जाना चाहिए और वहां पर अंदर ही रहना चाहिए जब तक ये क्लाउड बर्स्ट और लाइटनिंग के इवेंट्स रुक नहीं जाते। उसके 30 मिनट के बाद ही आप कहीं बाहर निकलना चाहिए। तो इन चीजों का ध्यान देना। परंतु अगर सपोज करो आप बहुत बड़े जंगल में जा रहे हैं ट्रैकिंग की, जैसे मैंने बात की, हो सकता है आप इसी वन क्षेत्र में है, तो वन क्षेत्र में है तो वहां के लिए ये चीज काम नहीं आएगी। तो वहां पे घना, जहाँ पे पौधों का समूह हो, तो उसके नीचे जाना चाहिए ताकि वो करंट जो है ना वो बॉडी ले ले नेचुरल, पर आपकी बॉडी के थ्रू नहीं जाए।
1: जी
0: तो क्लाउड का जो करंट का प्रवाह ग्राउंड में जाता है जब, तब आदमी उसका शिकार हो जाता है। जानवर है, जैसे जानवरों को भी हमें अंदर उसमें ले जाना चाहिए, किसी बंद क्लोज्ड एरिया में, ओपन एरिया में। तो ये सब चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है।
1: यहाँ पर यदि हम ये समझना चाहें कि बुनियादी ढांचे के स्तर पर, साथ ही जो अर्बन हमारा प्लानिंग है उसके स्तर पर, यदि हम दिल्ली शहर को ही उदाहरण ले लें, एनसीआर एरिया को ले लें, तो बारिश के दिनों में थोड़ी सी बारिश बहुत अधिक संकट का कारण बन जाती है, यातायात के लिए पानी जमा हो जाता है। यानी हम इस आपदा से मॉनसून के सीजन में अपने ड्रेनेज सिस्टम को या स्टॉर्म वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, क्या करना चाहिए हमें?
0: दिल्ली की आपने बात की, अगर आपको याद हो जुलाई 2023 में
1: जी
0: दिल्ली में बाढ़ का स्वरूप देखा गया और काफी मेहनत कश करके लोगों को बचाया गया। चेन्नई की बाढ़ 2015 दिसंबर की आपको याद हो, बेंगलोर में हुई, हैदराबाद में हुई, जहां शहरीकरण हो रहा है वहां जो आपने कहा कि जो हमारा जल निकासी का प्रबंधन है वो बहुत जरूरी हो जाता है। जितने भी ड्रेनेजेज हैं पहले तो वो उस कैपेसिटी के नॉर्मली नहीं होते जितनी वहां पे पॉपुलेशन रिसाइड करती है, परंतु जो कैपेसिटी भी है, क्षमता है नालों की, वो भी पूरा काम नहीं करती है। अगर उसमें से मिट्टी, गर्दा, पॉलिथीन ये सब नहीं निकाले जाते और क्लीनिंगनेस मानसून से पहले अच्छे तरह से नहीं की जाती है, तो कई कारण बन जाते हैं कि जब बारिश का पानी को ना तो ग्राउंड फिल्ट्रेशन का टाइम मिलता है क्योंकि सारा कंक्रीटाइज हो चुका है हमारा शहरीकरण, और दूसरा जो पानी सरफेस से नालों में जा रहा है उसमें क्षमता कम हो जा रही है, तो और तीसरा हम लोग जो है अंडर पासिस बना रहे हैं, जो लो लाइंग एरियाज होते हैं वहां पानी इनंडेशन हो जाता है, लोगों को अंदाजा नहीं लगता कि पानी का लेवल कितना है और लोग उसमें फंस जाते हैं। चौथा, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी, पावर लाइंस, ट्रांसफार्मर्स, पोल्स, इनमें करंट लगने का बहुत डर है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि पानी की वजह से इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किटिंग हो गया, करंट पानी में आ गया, तार गिर गई और कोई व्यक्ति उसकी टच में आ जाता है और मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में ये सब चीजों का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। जैसे आपका इलेक्ट्रिक कंट्रोल रूम है वो ग्राउंड फ्लोर पे है और इनंडेशन हो गया और लीकेजेस करंट की हुई तो खतरा बढ़ जाता है। तो ना सिर्फ आवाजाही की व्यवस्थाओं में या पानी के इनंडेशन की वजह से सामग्रियों के खराब होने में, परंतु सबसे बड़ा खतरा जो है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का है। आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लें तो अगर आपने अनप्लग नहीं किया बारिश के टाइम पे, लाइटनिंग के टाइम पे, तो वो उससे प्रभावित हो सकते हैं। तो इस दुष्प्रभाव को रोकने के लिए जैसे हमारा मौसम खराब होता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कम से कम यूज करें और उनको अनप्लग करके रखें। तो ये सब चीजें जो है एक समन्वय बनाने की जरूरत है सभी विभागों में और सभी व्यवस्थाओं में, और जनता की साझेदारी बहुत जरूरी है इसमें।
1: प्रोफेसर सूर्य प्रकाश जी, आपने बड़ी ही उपयोगी और आम जनता के समझ में आने लायक शब्दों में बताया कि हमें कहाँ नीतिगत स्तर पर काम करना है और कहाँ व्यक्तिगत स्तर पर सतर्क रहना है, ताकि मॉनसून की आपदा में अपना बचाव करने के लिए हम खुद सामने आ सके। तो श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और सभी श्रोतागणों का।
2: अभी आप सुन रहे थे बाढ़ प्रबंधन और मॉनसून की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार के प्रभावी उपायों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में प्रोफेसर सूर्य प्रकाश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम

आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कंट्री वाइड।

0: Arjun J. Chaudhary, anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
1: Insights.
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना है।
3: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
2: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बैहारा चारियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गोवर्धन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री मोदी ने कहा कि यह योजना कंप्रेस्ड बायोगैस को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से निवेश और नवाचार के लिए एक मजबूत और स्थिर इकोसिस्टम तैयार होगा। किसानों, सहकारी समितियों, लघु और मध्यम उद्यमियों, महिला उद्यमियों और ग्रामीण उद्यमियों को इसका लाभ मिलेगा। लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। जम्मू कश्मीर के संबंध में सदस्यों कि 2019 में अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक सहायता प्रदान की है। सरकार ने बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद 10 नाविकों

0: साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाने की अपील की है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने लोगों से हथकरघा उत्पाद खरीदकर बुनकरों और कारीगरों का समर्थन करने का आग्रह किया।
1: 7 अगस्त 1905 को देश के आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चरियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गोवर्धन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि ये योजना कंप्रेस्ड बायोगैस को बढ़ावा देगी। इस योजना से निवेश और नवाचार के लिए एक मजबूत और स्थिर इकोसिस्टम तैयार होगा। लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 भी आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। सरकार ने बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से 10 नाविकों सहित 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 75 भारतीय घायल हुए हैं। राज्यसभा में लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकारों के समन्वय से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को उनके पार्थिव शरीर को शीघ्र भारत लाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत इसराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई निरंतर प्रगति की समीक्षा की। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से आज मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये सफल परीक्षण देश की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि सरकार विमानन टर्बाइन ईंधन में इथेनॉल बनाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। 2 दिन का ब्रिक्स वेव्स बाजार आज मुंबई में शुरू हुआ। यह रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 21 ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदारों के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। वहीं ब्रिक्स उद्योग और व्यापार मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक आज जयपुर में शुरू हो गई। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वैश्विक व्यापार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल सेवाओं और आपूर्ति श्रृंखलाओं की मजबूती जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो रही है। झारखंड और केरल में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। झारखंड में विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विधानसभा में राजनीतिक गतिविधि तेज हो गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पंजाब और दिल्ली में संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय टैक्स सपोर्ट धोखाधड़ी और जबरन वसूली करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चलिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी